फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं।

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

0: आसमान।
1: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। हे अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हफ्ता है रबीउल अव्वल की 8 और अगस्त की 22 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के उनके हम मंसब ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और मलेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया है। सरमायाकारी बोर्ड के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक्तसादी और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी मुल्कों ने मकबूजा फलस्तीनी इलाके में गैर कानूनी आबादकारी की इसराइल की जारी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की है। और मजहब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के वाकयात के मुतासरीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के अपने हम मनसब दातो सेरी अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर अनवर इब्राहिम की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा तआवुन में इजाफे के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए इस तसलसल को बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त खुसूसन खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इन काबिल तारीफ कोशिशों की क्यादत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी कानून के नफाज तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में मलेशिया के साथ करीबी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वो मलेशिया के वज़ीर दाखिला दातो सिरी सैफुद्दीन नासुद्दीन इस्माइल से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सजा याफ्ता अफराद की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला दातो सिरी सैफुद्दीन नासुद्दीन इस्माइल और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और मलेशिया ने खुसूसन तिजारती माशी बाहमी कानूनी मुआवनत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफा तआवुन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुद्दीन इस्माइल के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया और अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरक मकासद के लिए मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। बरी फौज के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशिया के साथ दिफाई तआवुन और तस्वीराती रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वो मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुद्दीन इस्माइल से रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान में मलेशिया के सफीर और आला सतह के एक वफद के हमरा उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात का इआदा करते हुए बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन और रवाबित को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया। बरी फौज के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कांगो के आला सतह के एक दिफाई वफद ने रावलपिंडी में मुलाकात की। वफद की क्यादत कांगो के मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बानसा मोइलाम्बुए जोल्स ने की, جی ایچ کیو پہنچنے پر معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے. وہ اسلام آباد میں سعودی انویسٹمنٹ فورم کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری گروپوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور وفد کو یقین دلایا کہ سرمایہ کاری بورڈ ملک میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کو مکمل سہولت فراہم کرے گا. ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے، کاروباری اداروں کے درمیان روابط کے فروغ اور پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سہولت فراہم کرنے کے امور پر بھی توجہ مرکوز کی گئی. ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ریلوے کے نظام کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. وہ جھنگ میں ساندل بار ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بہتر اور جدید سفری سہولیات فراہم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہے. وفاقی وزیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ چین سے درامد کی گئی ایک ٹرین جلد شورکوٹ، جھنگ اور سرگودھا کے روٹ پر چلائی جائے گی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.59 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 368.29 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.59 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد

0: Islamabad. Call now 0330-511-0099.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: On the new line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: Entertainment, ho ya updates, yeh tumhari har mood ka dost.

0: हम है तेरी शम्म के परवाना में, जिंदगी होश में है जोश मेरी माना में। वतन हम है तेरी शम्म के परवाना में।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: level with zero tuition fee. 100% future. Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इस्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
3: On the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: Entertainment, ho ya updates, yeh tumhari har mood ka dost.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान।

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: Assalamu alaikum. Here you are, Jude Rebecca Abdul Singh. A very warm good morning to all listeners of FM 101. Umeed karti hai aap tamam sunne wale honge khair o afiyat se, apne apne chahne walon ke saath honge, guzar apni zindagi ke tamam lamhat, zindagi ke har lamhe ko jee lijiye haste muskurate, khushiyan bante khushiyan samajte ho. Assalamu alaikum. Good morning.
1: Good morning and wa alaikum assalam. Kaisi hain aap?
0: I'm doing very well. Ye subah subah aap microphone mein kya talash kar rahe the?
1: Main ye dekh raha tha iska front back kaun, to ye bada problem hai kapdon ki tarah iska. Kasam se mujhe aisa lag raha hota hai like main baniyan pehen raha hu ki front kaun sa back kaun sa, to wo thoda dekhna padta hai. Bahar ye zara hamare jo mics hain bahut hi mashallah mashallah Allah nazar bas se bachaye, bade acche wale international लेवल पे यूज होने वाले स्टैंडर्ड के माइक्स हैं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन जरूर होता है कि बैक साइड से आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल नहीं जाती है और फ्रंट से आपकी आवाज का पूरा
0: सारे आज अच्छे दिख रहे हैं. क्यों?
1: क्यों आज मैंने शायद एक सुबह कपड़े चेंज किए. मैं आज सुबह उठा ना तो मैं ये समझ के हर दफा मैं जा रहा हूँ, मैंने सैटरडे की एक ब्लैक टी शर्ट रखी हुई जो मैं पहन के चला जाता हूँ, लड़की क्या बोलेगी?
0: इजी हो जाता है.
1: ये लड़की बोलेगी कि यार इस बंदे के पास कपड़े ही नहीं
0: है.
1: तो फिर मैंने ये जो पड़े हुए थे दूसरे पैंट के आ गया.
0: I got it. पता है क्यों आप डिफरेंट लग रहे हैं? क्योंकि टी शर्ट जो होती है
1: राउंड
0: नेक के साथ,
1: ये कॉलर शर्ट है
0: और इसके साथ जो है वो हाफ स्लीव्स हैं.
1: हाँ ठीक
0: है. सो वो बात मैं देखें बड़ा डिटेल में, इतना कपड़ा है, मेरी बहन इतना हंसती है कहती है इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, अब रेडी पहन के

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

This is FM 101.

0: тебе.
1: You're listening to FM 101, Abele Bele Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और मलाइशिया के उनके हम मंसिब ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी ताल्लुकात में इजाफे के अज़्म जाहिर किया है। सरमायाकारी बोर्ड के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। पाकिस्तान समेत 8 अरब इस्लामी मुल्कों ने मकबूजा फलस्तीनी इलाके में गैर कानूनी आबादकारी की इसराइल की जारी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

बतेची दिल का मकी दुश्मन थी साथ मगर कोई नहीं। धक से हुआ दिल के ये इस वक्त कहा, उससे जो पूछा के बता, खैर तो है क्यों इधर आया, तो जवाब उसने दिया हंस के कि यूं

में से टका सा। अरे तो बा, अरे तो बा, चलो बैठे रहो, बातें न बनाओ। तुम यो ही मुंह से ये कहते थे तुम्हें हमसे मोहब्बत है। हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मलाशिया के साथ दिफाई तआवुन और तस्वीराती रवाबित को मजीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वजीर रेलवे ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में रेलवे का निज़ाम जदीद और बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। मजहब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के वाकयात के मुतासरीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान कानून के नफाज, इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और तारकीन वतन की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ तआवुन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

ताज व तख्त दौलत मौला की थी अता, रद्द करके अपने हक को क्यों दी खुद को सजा। मुश्किल था लेकिन जीने का रास्ता, क्यों दी दुनिया को तुमने ये कर।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to One Above FM 101.
2: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
3: This is FM 101.
4: सजड़ो तो बेलियो, मैं जली जफर
5: जफर
4: तुसी सुनने पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल FM 101। मेरा मतलब है FM 101।

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: This is FM 101.
2: सजड़ो तो बेलियो मैं जली जफर
3: जफर
2: तुसी सुनदे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम 101 मेरा मतलब है एफएम 101 101 101

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मम्लिकत ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासर खानदानों को माली इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आर्मी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलकत ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासर खानदानों को माली इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका इदारों पर जोर दिया है कि तरक्याती मनसूबों पर मौसर अमल दरामद के लिए बरवक्त इकदाम यकीनी बनाए जाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दो तरफा इक्तिसादी तालुकात मजबूत बनाने और पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फरोग में सहूलत देने पर इत्तेफाक किया है।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: This is FM 101.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM.
4: Welcome to Islamabad.
5: Music of your dream with Power at Extreme. FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.

0: सो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं अपने इंटर्न्स की तरफ और जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसमें उन्होंने क्या क्या सीखा। So, सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही प्यारी इंटर्न हमना सिद्दीकी। हम हमना सिद्दीकी से जानते हैं कि उन्होंने उनको ये ओवरऑल इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसा लगा और उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या क्या सीखा। अस्सलामुअलैकुम हमना।
1: वालेकुम अस्सलाम अरीज, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक।
1: मुझसे आपने पूछा तो नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे वैसे आज के दिन का थोड़ा सा दुख है क्योंकि आज आते हुए रास्ते में मेरा एक इयररिंग घूम गया था एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट इयररिंग्स। तो मैं तब से एक कान में इयररिंग पहन के दूसरे कान के आगे बाल करके घूम रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले।
0: आई गेट यू अ न्यू पेयर ऑफ इयररिंग्स, आई प्रॉमिस।
1: हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ यादें जुड़ी होती हैं ना, और यादों से मेरी जहन में आ रही हैं वो सारी यादें जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर और FM 101 के साथ अटैच्ड है। भी मुझे ऐसे लग रहा है कल परसों की बात है, हम लोग यहाँ पर आए थे, पहला दिन था और वो सेशन कोई भी नहीं हुआ था लेकिन हमें यहाँ इस रूम में लेकर आए थे सब इंटर्न्स को। सर फरहान यहाँ पे थे, सर असद यहाँ पे थे, उसके अलावा सर ज़िया, सर ज़ुबैर यहाँ पे थे, और इतना उस वक्त ऐसे लग रहा था कि वाओ कुछ क्रेजी होने वाला है, कुछ तो मज़ा आएगा, कुछ तो
0: एक्साइटमेंट थी,
1: बहुत एक्साइटमेंट थी। और अब ऐसे ख़त्म हो रहा है सब कुछ तो बहुत एक अजीब सी मिली जुली कैफियत है। खुशी भी हो रही है कि वी पास्ड अ माइलस्टोन, लेकिन थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि अच्छा वो गैदरिंग्स नहीं हुआ करेंगे, वो गेट टुगेदर्स और वो जो शुगल मजाक के थोड़े थोड़े सेशंस होते थे वो नहीं हुआ करेंगे। तो या इट्स अ कम्बाइंड फीलिंग। तो लेकिन ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो रियली थैंकफुल टू रेडियो पाकिस्तान लाहौर एंड टू FM 101 की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मैनेजमेंट, बिकॉज ये अपनी नौयत का पहला एक प्रोग्राम था जिसको इतने एनर्जेटिक तरीके से निभाया गया और इतना अच्छा फीडबैक इस प्रोग्राम को मिला। तो आई थिंक ये इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने वाले जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है यहाँ की, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। और आज आपके साथ जो गुफ्तगू हमारी चल रही है वो इसीलिए है कि हम अपनी टीम को एक खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश कर सकें कि उन्होंने इतना प्यारा इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव को जिस तरह से उन्होंने निभाया वो बहुत खूबसूरत रहा। और इसके साथ साथ महमूना भी हमारे साथ मौजूद हैं, महमूना चीमा। आप सामईन ने इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, एक दो प्रोग्राम्स भी इन्होंने किए और 14 अगस्त में भी हमारे साथ मौजूद थी और उससे पहले भी एक दिन उन्होंने प्रोग्राम किया। तो महमूना, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या, आप अपने साथ यादें भी लेके जा रही हैं और क्या आपकी फीलिंग क्या है?
2: अच्छा, थैंक यू सो मच अरीज, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और यादें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं। और वैसे तो जब भी हम खूबसूरत बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई टैंजिबल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई शक्ल, जिसकी कोई सूरत होती है, लेकिन यादों की कोई शक्ल होती नहीं है। लेकिन फिर भी यादों को खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूँ कि रेडियो पाकिस्तान में जो हमारा ये 2 माह का सफ़र था, मुझे पहले, मैं पिछले एक हफ्ते से मैं इस बात पे सोच रही थी कि यार मतलब ख़त्म हो रहा है, और आज भी मैं थोड़ी सेंटी हो गई और मुझे फील हो रहा था यार अब जो हर हफ्ते हम जाते हैं और सबसे मिलते हैं वो जो गैदरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर मुझे समझ आई और एकदम से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जब भी कोई सफ़र ख़त्म होता है तो वो एक नई शुरुआत होती है,
0: बिल्कुल
2: वो आपका एक नया आगाज होता
0: है।
2: अल्लाह ताला ने, यस एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने वो एक सफर इसलिए ख़त्म किया कि अल्लाह ताला आपके लिए एक नए दरवाजे खोल रहे हैं,
0: बिल्कुल ऐसे ही
2: है, अपॉर्चुनिटीज के आपके मौके आपको और मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमने जो कुछ सीखा है मुझे लगता है उसके बाद इंशाल्लाह हम स्तुत,
0: बिल्कुल
2: वो आपका एक नया आगाज होता है अल्लाह ताला ने, यस एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने वो एक सफर इसलिए ख़त्म किया कि अल्लाह ताला आपके लिए एक नए दरवाजे खोल रहे हैं,
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
2: अपॉर्चुनिटीज के आपके मौके।

0: सकते हैं और यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, और ये रेडियो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चूँकि फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए कि जो नया टैलेंट है वो जो है वो सामने आ रहा है।
0: जी बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे इंटर्न्स के साथ बातें तो चलती ही रहेंगी, तो हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा ट्रैक और वापस आते हैं इन्हीं बातों के साथ और इंटर्नशिप की यादों के साथ। तो जुड़े रहिएगा और सुनते रहिए FM 101।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, FM 101 के स्टूडियो से लाइव जा रहे हैं हम और आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर. लिसनर्स, आज बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ इंटर्न्स मौजूद हैं. बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं, कुछ इमोशनल बातें भी हो रही हैं और कुछ संजीदा और बड़ी मज़ेदार सी चुलबुली सी बातें भी हो रही हैं. हम पूछ रहे हैं अपने इंटर्न्स से कि इनकी कौन कौन सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो इस प्रोग्राम के साथ अटैच्ड हैं, कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन उन्होंने बहुत कुछ और सोच के आए थे और कुछ और हो गया. और इसी बात के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में एंटर हो रहे हैं कुछ अहम लोग, तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे. इससे पहले हम अरीज से पूछते हैं. अरीज, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर इत्तफाक से आई या आप अपने शौक से आई, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और कोई अपनी मज़ेदार सी मेमोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा.
1: जी हमना, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अरीज आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से। तो इंटर्नशिप के हवाले से हम जो है वो बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी यादें हैं जिनको हम रीलिव कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मैमूना चीमा भी मौजूद हैं, शहीर भी मौजूद हैं और अबू बकर जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो हम चूँकि अबू बकर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि अब अबू बकर से के पास जाएं और उनसे पूछें कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या सीखा, वो इस प्रोग्राम में आते ही कहाँ स्टैंड कर रहे थे और जब आज उनका ये सफ़र मुकम्मल हो रहा है तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या जो है वो अपने साथ यादें क्या लेकर जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से और जितने मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सबसे पहले तो। और दूसरा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हाउ वाज आवर इंटर्नशिप, कैसा गुजरा और हाउ वाज द वी फील ऑल ओवर द टाइम। तो आपने बात की कि जब हम यहाँ आए तो हम कैसे थे और उसके बाद अब कैसे हैं,
0: क्या फ़र्क है।
1: हाँ, तो वो मैंने वहाँ बैठे हम बात कर रहे थे तो तभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब मैं फर्स्ट डे आया था मेरा इंप्रेशन ये था कि मैं क्या हूँ, व्हाट शुड आई डू, यहाँ मैं ये कर रहा हूँ तो वेयर शुड आई यूज़ दिस,
0: बट जिंदगी में कोई फायदा होना है नहीं होना क्या।
1: नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लाइक जिंदगी में क्या फायदा होता है, लेकिन ऑब्वियसली हर फील्ड का एक फायदा
0: तो होता है, ऑब्वियसली
1: इन दिस सेंस के आई वाज गाय जिस जो ना चीजों को बहुत ज्यादा अलग तरीके से लेता है। बट जब दो माह गुजरे, यहाँ दो माह स्पेंड किए और दो माह स्पेंड करके चीजें सीखी और लास्ट हमने शोज किए और आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो जब माइक से इंटरेक्शन हुई और ऑडियंस के साथ जब वो एक इंटरेक्शन हुआ, हम लाइव गए, तो मैंने जब जाके मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लाइक आई कैन डू समथिंग। मैं मतलब इस दुनिया पे सिर्फ बोझ बनने नहीं आया,
0: तो
1: एक होता है
0: आपको कॉन्फिडेंस मिला कि जो मेरी आपका हिडन टैलेंट आपके सामने।
1: थ्रू आउट द इंटर्नशिप जितने हमारे मेंटर्स टीचर्स या वैसे उन्होंने हमें साफ कहा था वी आर नॉट टीचर्स, हम आपको भाई बहन की तरह आपको सिखा रहे हैं, बट दे टीच अस अलॉट। और उन्होंने जितना अपना एक्सपीरियंस था, आई थिंक वो उसका एक निचोड़ जो था वो दो माह में हम लोगों को वो सिखाया और थैंक गॉड हम सीख भी गए। ये एक अच्छी बात थी हमारी,
0: सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं।
1: और यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग ने जो दो माह में उन्होंने एफर्ट्स किए हैं शायद हम उसे पे ऑफ तब करेंगे जब हम एक्चुअल कहीं जाके परफॉर्म करेंगे और वहाँ बताएंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एफ एम 101 से स्टार्ट किया।
0: बिल्कुल, तो यही बात आपसे पूछ रही थी कि आप ने जैसे मेंशन किया कि आप अभी तक सीख रहे हैं और ऐसा ही है कि सीखने का अमल आपकी जिंदगी में हमेशा चलता रहता है, वो चलता रहता है और आप सीखते रहने के बाद जहाँ जाकर आप स्टैंड करते हैं। और जैसे मैं अभी पहले भी कह रही थी कि आपकी इम्प्रूवमेंट और आपकी ग्रोथ जो होती है पर्सनली, आपकी पर्सनैलिटी में जो एक शिफ्ट आता है
1: बिल्कुल
0: वो बहुत मीनिंगफुल होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, मीनिंगफुल। देखें, मैं पहले भी वीडियोस क्रिएट करता था एज अ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मैं उस तरह से उसको पोस्ट नहीं करता था या मैं रेगुलर नहीं था उस चीज़ में। बट यहाँ आके मैं, यहाँ पे हमारा एक सेशन था वीडियोस का जिसमें आई क्रिएटेड अ वीडियो और मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिली उससे। तो देन
0: आपकी वीडियो बहुत मज़े की थी
1: और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं लाइक अच्छा करूँगा और इसको लोग पसंद करेंगे। मैं बनाता था, रख लेता था, पोस्ट भी नहीं करता था ना। तो सर ज़िया ने मुझे कहा कि दिस इज़ पोटेंशियल, आपकी फील्ड उसमें काम करो। लेकिन ऑब्वियसली अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रहा हूँ तो इसमें रेडियो का सबसे बड़ा हाथ।
2: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अबू बकर की एक अच्छी बात ये भी कि हमने जब ड्रामा किया तो हमारा सेम ग्रुप था।
0: अच्छा।
2: और सर जुबैर बशीर हमारे साथ थे, मैडम नगमाना ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइड किया। तो मैंने अबू बकर का जब फर्स्ट डायलॉग सुना ना, और देख उस टाइम तो ज़ाहिर हम देख भी रहे थे, हम साथ थे, इसके इतने मजे के एक्सप्रेशंस होते हैं ना,
3: आग लगा दी थी अबू बकर ने।
2: बिल्कुल, मतलब जो भी चीज होती है ना उसको फील करके बोलना, आप खुश हो तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस खुश ही होंगे, चाहे वो सिर्फ आवाज जा रही है और लोग नहीं देख रहे, और वो गमगीन है तो वो मतलब इसके जो एक्सप्रेशंस है ना वो बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
1: थैंक यू, आपने इतना एक्नॉलेज किया। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन आई विल ट्राई। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी काम जब स्टार्ट करो तो उसको जितना आपको आता है उतनी एफर्ट्स आप डाल दो। उसका अच्छा या बुरा होना बाद की बात है,
0: बिल्कुल
1: जज बाद में किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपको रिग्रेट ना रहे कि यार अगर मैं ट्राई कर लेता या और अच्छा कर लेता, तो जितनी एफर्ट्स हैं डाल दो।
2: हाँ, रिजल्ट तो जाहिर है एक बात की चीज है, लेकिन आपकी एफर्ट मैटर करती
1: है। और वो ड्रामा मैंने आप लोगों के साथ, आई वाज बिजी एट सम प्लेस और वो सेशन मैंने मिस कर दिया था, बट थैंक्स टू मैडम नगमाना और थैंक यू, उन्होंने तो बहुत ज्यादा मुझे उस चीज में सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ और आप परफॉर्म करोगे ड्रामा। मैंने कहा मैं एक दिन पहले स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, मैं कैसे उसको लेके चलूंगा, बट शी सेड नो यू कैन डू इट। तो
2: यही चीज है जो बेसिकली यहाँ के जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, उन्होंने एक वो जो ट्रस्ट वाली चीज है ना कि मतलब हम ट्रेनीज हैं, हम इंटर्नीज हैं, हम अभी उस तरह से प्रोफेशनल नहीं है, बट हमें इस माइक के आगे बिठाना, हमसे ड्रामास करवाना, हमें स्टेज पर बुला के परफॉर्म करवाना, तो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, वो हमें ये मौके दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं।
3: बिल्कुल मेमुना, जैसे आपने बोला, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आई हैव डन इट एट डिफरेंट लोकेशन, वहाँ पे इवन एक कैंपस रेडियो है, वो आपको प्रॉपर ट्रेन करते हैं 3 से 4 महीने एंड देन दे गिव यू द माइक विद द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कि आपने ये करना है ये नहीं करना। दे स्लोली इंट्रोड्यूस यू एंड देन अलाउज यू टू गो देयर एंड 101 की मैनेजमेंट को ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम इंटर्नेस को मेरे साथ एक वाक्य हुआ था, आई वॉन्ट टू शेयर। मैं अपना शो कर चुका था एंड 2 इंटर्नीज ऐसे थे जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं थे क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद एंटर हुए थे। अब उन्हें क्योंकि बाकी ग्रुप्स अपना ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे, तो दे मेड श्योर कि वो शो करें एंड वो बंदे जिन्होंने सबसे पहले शोज किए थे, अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम एंड बकर वाज देयर विद मी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मैं शहीर के साथ था और वो 10 बजे की स्लॉट थी और हमने स्टार्टिंग भी की थी और एंडिंग भी की थी, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे।
0: क्या बात है।
3: तो ये सिर्फ यही बात है कि मित खतीजा सर सद अब्रार सर दियांजुम और वो तमाम लोग जो हमारे साथ इस ट्रेनिंग सेशन में रहे हैं, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि वो हमारे साथ रहे। मीनवाइल अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप डायल कर सकते हैं 0422111001, आपकी कॉल्स को हम जरूर शामिल करेंगे। इसके अलावा
2: शामिल करेंगे कॉल्स को भी और जो भी लोग, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो अपनी बातचीत अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं, अगर हमारे लिसनर्स हमारे सामईन अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड है और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे इंशाल्लाह हमारे से मुराद, मैंने बहुत जल्दी इस जगह को ऑन कर लिया, हमारे से मुराद पाकिस्तान के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं ये अगले आने वाले दिनों में अगले आने वाले महीनों में भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। हमारा जो बैच था ये बेसिकली स्टार्ट था इस जर्नी का और नए टैलेंट को आगे लाने का, ये सामने लाने का। फर्स्ट बैच के बाद मजीद जो है टैलेंट वो भी आगे आएगा। सो अगर जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचे और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बस उसको पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और आप लोग अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ही आपको पता चल सकेगा कि हमारा नेक्स्ट बैच कब और किन डेट्स में आएगा।
3: जैसे भी हसन रहीम का गाना भी चल रहा था, पीछे हट रास्ता छोड़िया हम आगे, तो अब हम आगे तो हम सबको लाएंगे। उठाइए फोन, डायल कीजिए नंबर, आपकी कॉल का हम वेट कर रहे हैं। ओवर टू यू रीच।
0: थैंक यू सो मच शहीर, आपने नंबर जो है वो शेयर कर दिया हमारी ऑडियंस के साथ और मैं चाहूंगी कि हमारे जो इंटर्नीज हमें सुन रहे हैं वो भी हमें कॉल के थ्रू ज्वाइन करें, जो यहाँ अभी स्टूडियोज में मौजूद नहीं है।
2: yes,
0: हम चाहेंगे कि वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उनसे बात करके डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक हमारा जो फॉर्मल सेशन था वो तो अब कल्मिनेट हो गया है, लेकिन उनके साथ जो एक ताल्लुक कायम हुआ है, जो राबता कायम है, वो अब कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें वो एक्टिव रहे, तो हम उनको याद करते रहेंगे, उनसे बातचीत रहेगी। अच्छा, इसके साथ ही हमें ज्वाइन करते हैं अहमद भट्ट, ये भी हमारे साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल रहे और इनकी लर्निंग जो है मैंने देखा इनको ग्रो करते हुए थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि जब ये आए थे तो काफ़ी शाये کم بولنا اور ایکسپریس نہیں کرنا خود کو, لیکن اچھی چیز یہ تھی جیسے میمونا نے مینشن کیا بٹ صاحب, تو ہمارے انٹرنشپ پروگرام انٹرنشپ بیچ کے بٹ صاحب جو ہیں وہ احمد بٹ ہیں, اور جتنے بھی ہمارے منٹورز ہیں وہ ان کو احمد بٹ ہی
2: بلکہ بٹ صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں بھی ذہن میں ہونا, بٹ صاحب پتہ ہے بھائی سب نے بٹ صاحب
0: کہہ کر بلایا کرتے تھے. اور ابھی پروگرام جب میں کر رہی ہوں تو مجھے ان کا اصل نام نہیں آتا, میں نے ان کو اسپیشلی بلا کر ان سے نام پوچھا ہے کیونکہ میرے ذہن میں بٹ صاحب ہی تھا.
3: جرنی کی آپ نے بات کی ہے, جب آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈرامہ کر رہے تھے اینڈ ہم نے کیسے بلوایا تھا ان پہ,
0: ان کو ہم نے پراپر جو ہے وہ ڈائیلاگ بولنے پر ان کو ہم نے بلوایا نہیں تھا, ان کو اگلوایا تھا, ان سے کہا تھا کہ یہ ڈائیلاگ بولیں, اور ان کو سکھانے میں ہمیں جو ہے وہ بہت خوشی بھی ہوئی اور ہماری اپنی بھی لرننگ ہے اس میں. اور چلیں اب وداؤٹ فردر ڈیلے ہم بات کرتے ہیں احمد بٹ سے اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لرننگ پروسیس کیسا رہا اور انہوں نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کوپ اپ کیسے کیا اور آج وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں.
2: جی بٹ صاحب,
4: فرسٹ آف آل تمام سننے والوں کو میرا سلام اور تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا جاؤں تو میرا ڈے ون جب میں یہاں پہ ریڈیو پاکستان میں انٹر ہوا اور آج کا دن جو ہمارا لاسٹ سیشن رہا, آئی ہیو سین اے لاٹ آف امپروومنٹ ان می, کہ میں جو پہلے بولنے سے ڈرتا تھا, مطلب کہ کوئی بھی پریزنٹیشن ہوتی تھی تو میں سب سے پیچھے ہوتا تھا, میں کہتا تھا کہ مجھے دیکھ نہ لے کیونکہ آف کورس میں احمد بٹ کی جگہ بٹ صاحب کے نام سے مشہور تھا, تو سب لوگوں کو ہوتا تھا کہ بٹ صاحب سب سے پہلے آئیں گے, تو میں بہت شائع تھا, میں کوشش کرتا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ, لیکن آج کے دن آفٹر دا انٹرنشپ بہت کچھ سیکھا, کہاں کیسے کیوں اور کب بولنا ہے,
0: بالکل بالکل
4: یہ سب سکھایا گیا ہے, اور کانفیڈینس میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آ کر بے شک لوگ صرف ہماری آواز سے مجاج کرتے ہیں لیکن یہ کانفیڈینس بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے, ایون دو کہ اگر ہم باہر بھی کسی بھی چیز پہ بات کرتے ہیں نا تو آئی تھنک کہ ان چیزوں نے بہت ہیلپ کیا مجھے.
2: بیسیکلی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوئی ہیں
0: ہر انسان, کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ہماری انٹرنشپ پروگرام کا سب سے اسپائنل پارٹ تھا اور اس نے جو ہے وہ ہماری لرننگ پروسیس میں سب سے زیادہ ہیلپ کیا. اور ایک بات میں سب سے امپورٹنٹ بات جو مینشن کرنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن سکلز پہ نہ صرف ہمیں ہمارے مینٹورز نے گائیڈ کیا ہے بلکہ ہمارے پاس گیسٹ اسپیکرز نے آ کر ہمیں پراپر پریزنٹیشنز دیے ہیں اور اس پہ سیشنز ہوئے ہیں, تو اسی کمیونیکیشن سکلز والے سیشنز کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو ہے وہ
2: آپ لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں.
4: اگر بات کریں تو آپ کے انٹرنشپ کا جو فریم ورک ہے نا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا, مطلب کہ پہلے آپ کو وائس میسیجز پہ, پھر ویڈیوز پہ, پھر اس کے بعد اسٹیج پہ, اینڈ دین اب ایز اے آر جے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں,
2: ترتیب کے ساتھ, بالکل بالکل,
4: وہ اس چیز نے بہت ہیلپ کیا ہے کہ اگر آپ شائع بھی ہیں تو اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ سیشن سے تو اینڈ تک آپ پالش ہو جاتے ہیں. بالکل
0: اسٹیجز میں ہم جو ہے وہ گروم ہوتے رہے ہیں اور ہمارا یہ سیشن جو ہے, ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت ونڈرفل رہا ہے, بہت امیزنگ سا رہا ہے, ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں جن پہ ہم آج نادم بھی ہوں گے, لیکن کیونکہ ہم
2: لیکن وہ میں کہتی ہوں ایسی جو مسٹیکس ہیں نا بڑی کیوٹ کیوٹ سی مسٹیکس ہیں اور ان کیوٹ مسٹیکس سے ہی بیسیکلی ہم نے سیکھا.
3: اب کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, ہمارے
2: لیکن ہمارے ساتھ حسیب بھی موجود ہے,
3: اس لیے ہم حسیب بھائی کو موقع دیں گے, بھرپور موقع دیں گے.
4: شکریہ آپ کا سب سے پہلے.
2: اچھا سوری حسیب, حسیب کا ایک اور نام ہے, تعارف اس سے ہونا چاہیے تھا, لیکن میں نہیں وہ نام لوں گی. حسیب آپ کی ہے اجازت,
4: آپ کروا لیں تعارف.
0: اچھا حسیب جو ہیں, جو ابھی ہم ریڈیو ڈرامہ کی بات کر رہے تھے, حسیب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ریڈیو ڈرامہ کیا اور اس میں جو کیریکٹر انہوں نے پلے کیا اس کیریکٹر کے نام سے آج یہ ماشاءاللہ مشہور ہو چکے ہیں,
2: مشہور و معروف,
0: تو ہم اسی نام سے بلا لیتے ہیں. جی جیلا صاحب, تو آپ بتائیے کہ آپ کا انٹرنشپ پروگرام کیسا رہا, کیا یادیں ہیں آپ کی, اور آج آپ اپنے آپ کو کہاں فیل کرتے ہیں, اور میں ایک اور بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے فیوریٹ مینٹور کون رہے ڈیورنگ دی ہول سیشن.
4: جی السلام علیکم, پہلے تو میں حسیب الرحمان تھا, ڈرامہ کے بعد میں آر جے جیلا اور حسیب الرحمان,
5: उसमें मेरा करेक्टर थोड़ा सा खराब था लेकिन मेरा रियल करेक्टर अच्छा है, बुरा ना मनाइए.
6: नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं,
2: लेकिन वो ड्रामा बहुत अच्छा था एक्चुअली, बड़े अच्छे थीम पर.
6: और आपने जिस जो वहाँ पे परफॉर्म किया, जिस तरह से आपने डायलॉग्स डिलीवर किए और आपने ऑडियंस पे एक इम्पैक्ट छोड़ा है, और उसी इम्पैक्ट का नतीजा है कि आज आप मशहूर हो गए उसी नाम से, तो दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. हम इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं मानते.
5: इसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ, जब मैं पहले दिन आके बैठा था ना, बल्कि सारे सेशंस में मेरी कोशिश होती थी, जैसे बट ने बताया कि मैं पीछे छुप के बैठा रहा, मेरी भी कोशिश होती थी मैं छुप के बैठा हूं, किसी को बुलाते थे थ्रू
6: आउट कि आप पीछे बैठे हुए हैं और
2: छुपे रुस्तम ऐसे लोग जो है ना, वो एकदम से सामने उभरते हैं और फिर कमाल करते हैं.
3: आप सब उनके पीछे बैठने की बात कर रही हैं, पीछे आप दोनों भी बैठते हैं.
2: मैं तो लेट आने की वजह से पीछे बैठती थी.
6: मेरे भी पीछे, मैं हमेशा देर से आती हूं. मेरे भी पीछे बैठने का यही रीजन होता था कि मैं थोड़ा सा छुपकर बैठना चाहती थी कि मुझे अभी कोई ना देखे. एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी नर्वस हो जाती थी कि मुझे मेंटोर या ट्रेनर जो है वो फटाफट उठा के स्टेज पे ना भेज दे, और मुझे मैंने देखना है पहले लोगों को कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या गलतियाँ हैं, उनकी गलतियों से सीख के मैं स्टेज पे जाऊंगी तो मैं अपने आप को इम्प्रूव्ड थोड़ा सा वर्जन प्ले कर पाऊंगी. तो इस वजह से मैं कर रही थी. और हसीब आप बताइए फिर, आप जो है वो पीछे बैठकर आपने क्या क्या बातें सीख ली, क्या क्या चुप चुप के सीखते
5: अच्छा,
6: रहे आप?
5: होता ऐसा था, मतलब मैं पीछे बैठा हूँ ना, मेरा फोकस पूरा होता था क्योंकि मैं शुरू से बैक बेंचर हूँ, तो शरारते भी करता था अपनी क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं फुल फोकस होता था. कोई भी बच्चा अगर स्टेज पे जाता था तो मैं खुद को इग्नोर करता था कि मुझे और मेरी टांगे कांप रही हैं,
6: आई कैन फील यू,
5: कि मैं क्या बोलूंगा. पहले तो छुपा रहा, उसके बाद मैम नगमाना का शुक्रिया.
6: yes,
5: और
6: exactly.
5: आप सबकी गैदरिंग बहुत अच्छी थी, कि ड्रामे के बाद थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. जो उन्होंने प्रैक्टिसेस कराई, स्टेज पे बुलाया, लेकिन अभी भी मैं मतलब फर्स्ट टाइम कुछ भी करता हूँ तो हेजिटेट होता हूँ. पहले से बहुत बेहतर है,
6: बेहतर है बिल्कुल,
5: डे वन से अभी बहुत बेहतर है. वैसे तो मैं यहाँ पे आके मतलब मस्तियाँ करके चले जाता था, हमने घंटे घंटे के शो किए हैं,
6: तो
5: आज थोड़ा सा सीरियस हूँ.
2: वो आज जरा ऑफिशियली हमारा आखिरी भी सेशन था ना, तो इसलिए भी शायद वो थोड़ा सीरियस.
6: और दूसरी बात ये कि आप जब एक चीज सीख लेते हो ना, तो आप उसके माहिर हो जाते हो एक तरह से, कि आपको फिर वो चीज डराती नहीं है, आपको वो एक्साइट करती है कि आपने इस फील्ड में परफॉर्म करना है, और यही इस होल प्रोसेस की खूबसूरती है.
2: प्रैक्टिस
5: आपकी ना ताकत बन जाता है.
6: बिल्कुल
3: ऐसे ही है. आप सब बात कर रहे थे कि आप सबको फियर रहता था स्टेज पे जाने का, तो ये जगह ही ऐसी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं होता. मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा अर्ज होता था ना कि मुझे स्टेज पे क्यों नहीं बुला रहे, एंड अरद भाई देख लेते थे, वो मुझे कह के जाते थे आज तुम्हारी बारी नहीं आ रही. इट इज़ नॉट फॉर यू.
2: अच्छा ये चीज़ मेरे साथ तब हुई थी जब इंट्रोडक्शन वाला हमारा स्टार्ट में था ना, सब लोग स्टेज पे जा रहे थे, उसमें मेरे ख्याल से सबको ही मौका मिला, सिर्फ चंद एक होंगे, और वो मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे आज तक उसका दुख है. मुझे भी स्टेज पे जाके वो तारुफ अपना कराना था, और मुझे भी वो सरसत की हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने पहले स्टेज पे जाना है, कुछ सेकंड्स का पॉज लेना है, फिर बात शुरू करनी, बात करते करते आपने चलते चलते बात करनी. मेरी अभी भी अधूरी ख्वाहिश है, अगर इस वक्त आरजे डॉक्स हमें सुन रहे हैं, सर मुझे ये मौका नहीं मिला.
5: मैंने ये वाले सेशन छुप के मिस करवाए थे.
6: आपने बहुत कुछ मिस किया है, जैसे मैमूना बात करी है कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस मिस कर दिया है.
2: ना मुझे वो करना,
6: और ये इस बात का फोमो तो आपको हमेशा रहेगा,
2: हमेशा रहेगा हमेशा.
7: वहाँ पे एक चीज ये हुई थी कि काफी बच्चों का कहना था कि लाइक हमारा टाइम था इतना, तो टाइम ऊपर हो रहा है, तो इसलिए हाफ बच्चे जो थे मौजूद उन्होंने किया था, और हाफ रह गए.
2: नहीं वो फिर अगले दिन भी हुआ था ना, ये दो दिन चला,
7: नेक्स्ट डे भी हुआ था, लेकिन
2: मैं अगले दिन वो
7: बेसिकली मैं
2: मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया भाई मेरी बारी आएगी, वो अगले दिन भी नहीं आई.
7: मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक जगह पे मौका नहीं मिला तो लाइफ आपको दूसरी जगह पे मौका देती है, तो आप स्टैंड आउट कर जाते हो, जो आप हो आप बता जाते हो, दिखा जाते हो.
6: और ये बात मैमूना की जो ग्रोथ है वो चाहे उस स्टेज से शुरू नहीं हुई, लेकिन आप बहुत आगे स्टैंड कर रही थी, और आज माशाल्लाह जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं, और
2: अपॉर्चुनिटीज मिली, और
3: मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था मैं डर लगता था, अभी मैं बोल भी दूर करा हुआ हूं. मुझे इन्होंने जैसे बताया आई वाज लाइक मैं तो पक्का जीत.
2: रही है असल में, चूंकि
7: ऐसा क्यों सोच रहे थे आप, आपको पता था आपकी कोई ना कोई हरकत
2: ऐसी। अच्छा इस वक्त हमारे सुनने वाले कंफ्यूजन में है कि ये क्या बात हो रही है।
6: अच्छा मैमुना आप अपने आप को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है लेकिन चलें आप दो मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा ही दें।
2: तारुफ ये है मेरा कि मैं हमेशा तारुफ में सबसे पहली बात तो ये करती हूँ कि मेरा ताल्लुक है चीचावतनी से, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से, और चीचावतनी एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। और मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी इंटरमीडिएट तक वो वहाँ से हुई, उसके बाद मैं यहाँ पर आई, लाहौर में आई। और मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ थी कि मैं कुछ जो हमारे इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा होता था मैं उस पर आवाज़ उठाती थी, और उस हवाले से जो इदारे या जो भी चीज़ें सपोर्टिव होती थी मैं उसको जो है उन लोगों के साथ कनेक्ट कराती थी या इंट्रोड्यूस कराती थी। तो अभी तक बस इन शॉर्ट यही कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहती हूँ कि कम्युनिटी में अपनी तरफ से मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ करूं, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस तरह के मुझे मौके मिलते रहें कि अगर किसी के लिए मैं कुछ कर सकूं जो उसको ज़िंदगी में खड़ा होने में, उठने में, ऊपर जाने में, आगे जाने में मदद कर सके तो मुझे इससे कुछ।
6: दैट्स वंडरफुल एंड दैट्स इंस्पायरिंग फॉर मी एज़ वेल कि आप जो है वो अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हैं, बेटरमेंट के लिए काम करना चाह रही हैं, वेलफेयर करना चाह रही हैं। तो हमारी सोसाइटी में सोशल वेलफेयर की बहुत ज़रूरत है, और आप जैसे नौजवान लोग जो कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे सोसाइटी को विदाउट एनी रिवॉर्ड कुछ देकर जाना चाहते हैं, इन लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके साथ ही हम रिमार्क्स ले लेते हैं, फाइनल रिमार्क्स आप में से कौन देना चाहेगा? आई थिंक अहमद
5: नहीं, लेकिन मैं मेमूना से कुछ पूछना चाहूंगा।
6: जी जी,
5: कभी ऐसा हुआ है पापा ने छोटी बहन को चीज ले दी और आप रह गए?
2: मैं सबसे छोटी हूं, मुझे लेके देते हैं, मैं सबसे छोटी हूं, मुझे सब मिलता है।
7: ऑपरेशन की बात नहीं करनी चाहिए,
2: अच्छी की बात नहीं करनी चाहिए।
6: मेमूना जो है
2: ऑपरेशन नहीं, मैं वो बंदी हूँ, अब मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ जहाँ पर आपको हक मिल रहा है वो ठीक है, जहाँ पर नहीं मिल रहा वहाँ पर लेना सीखिए।
6: बिल्कुल, और मेमूना
2: जो राइट है ना वो लेना चाहिए,
6: और मैं यही बात मेंशन करना चाहती थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
6: चाहे मेमूना सबसे छोटी है, मेमूना को उनके फादर जो है वो दिला देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेमूना जो है वो जानबूझ के जाके उनसे फरमाइश करके लेने वाली बंदी है। तो
2: वो भी छोटे बच्चे लाडले तो होते हैं ना।
6: बिल्कुल, चलिए हम फाइनल रिमार्क्स ले लेते हैं कि अबू बकर आप बताइए कि आप क्या कहना
2: चाहेंगे। अबू बकर के अभी भी एक्सप्रेशंस देखें कितने मजे के हैं, हम सबसे अच्छे एक्सप्रेशंस हैं इस वक्त अबू बकर,
6: मुझे लगता है सबसे ज्यादा एंजॉय भी अबू बकर ही कर रहे हैं,
2: वो उनके फेस से पता चल रहा है।
7: मैंने बहुत एंजॉय किया थ्रू आउट, यानी ये 2 मंथ्स में बहुत एंजॉय किया और अभी भी बहुत कर रहा हूँ। और आई थिंक आपको हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, उसकी रीजन ये है कि आप जब सीख रहे होते हैं ना, आप सीखते हुए जब उस चीज़ को अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं ना, वो आपके लिए मुश्किल हो।
6: बिल्कुल ऐसा ही है।
7: पर जब आप उसको इंजॉय करके करते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैं सीख सकता हूँ तो सब सीख सकते हैं, एवरी वन हैव टू वर्क और सब कर लेंगे।
6: बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप खुश रहकर या आप इंजॉय करके सीखते हैं तो आपकी एक इमोशनल मेमोरी बनना शुरू हो जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम अहमद
2: बट साहब, बट साहब, बट साहब, देखिए वो अहमद कह के अटक जाते हैं,
6: फाइनल रिमार्क्स साहब
2: ज्यादा इजी है ना।
4: फाइनल रिमार्क्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 2 मंथ की इंटर्नशिप में हमने बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं पता चला कि फर्स्ट डे कौन सा था और 2 मंथ कब कंप्लीट हो गए, आज आखिरी दिन है। और आपको सीखते रहना चाहिए, अगर आप शाये हैं तो उसके चक्कर में आपको कुछ चीज मिस आउट नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए एक रिग्रेट बन जाएगा।
6: बिल्कुल। और हसीबुर रहमान आप क्या कहना चाहेंगे?
2: आरजे जीला।
5: सोच के बताऊंगी
6: जल्दी से कोई एक छोटी सी बात जो आपने बिल्कुल आपको लगा हो कि ये मेरी इंटर्नशिप का क्रक्स है।
5: नहीं, इन सब ने बड़ी अच्छी बात बता दी, मेरा भी यही सीन था, मैं भी यही चीजें बताना चाह रहा था। लेकिन एक चीज ये है कि आप नर्वस होते हैं, आप कभी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उस चक्कर में आप ये ना करें कि आप पीछे बैठे रह जाएं, आगे जाएं, आगे बढ़ के मौके को पकड़ लें और उसको हाथ से जाने ना दें, क्योंकि हर दफ़ा एक ही तरह का मौका बार बार नहीं आता।
6: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया आज हमें इस सेशन में ज्वाइन करने का और आपके मेमोरीज शेयर करने का। इसके साथ ही हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम और हमारा ये आज का सेशन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जो हैं वो आज नहीं हो सकी इस माइक पर आकर, इस सेशन में हम नहीं कर सके।
3: लास्ट टाइम में ये कहना चाहेंगे, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल हमारा नहीं भरा अभी।
6: दिल तो वाकई कभी नहीं भरेगा हमारा, क्योंकि ये जो हमारा लर्निंग प्रोसेस था, हम जूनियर्स आए यहाँ पर, मतलब रेडियो में सबसे छोटा होना भी एक एजाज की बात
2: है। अच्छा फील होता है।
6: थैंक यू सो मच ममूना, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम जो है वो अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और अपने सामईन को खुदा हाफिज़ कहते हैं, और इसके बाद जो है वो रेडियो पाकिस्तान से आप न्यूज़ सुनेंगे।

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म चाहे दिन या शाम पूरी कायनात वो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: अपनी हजक सात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारते मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: کرتے تھے، جملے کستے تھے، تضحیک آمیز باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو سیاست سے دور رکھیں۔ آج جب ان کی صحت کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر آیا، تب بھی پوری گورنمنٹ، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ تضحیک کی ہو، توہین آمیز رویہ اپنایا ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی تانے بازی کی ہو۔ تو جب یہ کورٹ کا آرڈر آیا، وزیر قانون نے بڑی وضاحت کے ساتھ حکومت کا ایک موقف اس پر پیش کیا، اور وہ موقف یہ تھا کہ جو بھی ہونا ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا ہے، اور اس میں جو ریویو کی اپلیکیشن انتظامیہ نے فائل کی، اس میں جو گراؤنڈز لیے گئے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے موجود ہیں کہ کوئی ایکسیپشن نہ کریٹ کی جائے، کسی قسم کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں، اس کا تاثر اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ تو ریویو کے گراؤنڈز میں یہ بڑا مؤدبانہ طریقے سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سہولت ہر قیدی کو میسر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا قانون اور آئین، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے۔ یہ پہلے دن سے موقف تھا، جیسے ہی فیصلہ آیا، چند گھنٹوں بعد وزیر قانون نے بڑی ایک مؤدبانہ طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ریویو پٹیشن انتظامیہ نے فائل کی، اس کے گراؤنڈز پوری قوم کے سامنے رکھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوئی، کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا شفاف طریقے سے کرایا گیا؟ جی شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں؟ جی موجود تھیں۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ تمام لوازمات جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھیں، وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے، اور آئین اور قانون کے مطابق انتظامیہ نے آنریبل سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اب معائنہ بھی ہو گیا، ہمشیرہ بھی موجود تھیں، شفاف طریقے سے ہوا، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے، تمام تر جو ریکوزٹس تھے، جو ریکوائرمنٹس تھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی، وہ تمام تر پوری کی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا موقف تو واضح رہا ہے، آرڈر کے آنے کے بعد لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ، جس میں ریویو کے گراؤنڈ، ایکسیپشن کریٹ کرنا، لا اینڈ آرڈر، قانون، اس کے مطابق ہر چیز کا ہونا، کسی قیدی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہ کی جائے، اس بات کا شامل ہونا، یہ ساری بات ہو گئی۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، جب امپلیمنٹیشن ہو گئی، معائنہ ہو گیا، تو میں نے دو ٹویٹس اس پر کیے الگ صبح کل، اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ ان کا معائنہ کرایا گیا ہے اور کورٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا گیا ہے، اور ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں، اور شفا کے ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے، اور تمام تر جو کورٹ کے آرڈر کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا گیا۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ بالکل انہوں نے ایک جو لائٹ آف نالج ہوتی ہے وہ ان سے کوسوں میل دور ہے، تو میں اس لیے ان کو تحریک انصاف کہہ رہا ہوں، بیکاز تحریک ہے اور انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہوتا تو کبھی بھی کنٹیمپٹ پٹیشن فائل نہ کرتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا۔ ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے، جب معائنہ ہو گیا، ہمشیرہ موجود تھیں، شفا کے ڈاکٹر موجود تھے، شفافیت سے پوری قوم کو بتایا گیا ایوری اسٹیپ آف دا وے، لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، پھر میرے دو ٹویٹس، سارا معاملہ ہم نے، اس پہ ایک سیاسی بیان نہیں ہے ہمارا، جو حقائق تھے، جو فیکٹس تھے، وہ ہم نے لمحہ بلمحہ قوم کے سامنے رکھے، اور کورٹ کے عزت احترام میں اور کورٹ کے آرڈر کی منشا کے مطابق ہم نے یہ تمام تر چیزیں شفافیت سے ہم آگے لے کر چلے۔ اب کنٹیمپٹ، ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا، وہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? पहला सवाल। क्या कोर्ट ने यह नहीं कहा था उसी ऑर्डर में कि आप सियासत नहीं करेंगे, और कोर्ट ने इंतजामिया को भी कहा था कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? जो जिन लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया की रील्स बनाई, टिकटॉक्स बनाई, मजमा इकट्ठा किया, उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया, क्या वो तरीके इंसाफ नहीं थी? और क्या उनकी तरफ से कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन नहीं की गई है? और उसके बाद जो सियासी बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दर बयान, वो भी आपने देख लिया कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है एंड इफ somebody इज इन contempt, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन contempt एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो कैदी है इसकी फैमिली contempt की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। मुझे ये बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें। यह पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह, अपने लीडर, जिसको वो कहते हैं बानियों में से मारा एक बानी है, उसके इलाज में रखना डाले। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा कि आप वहां टोलियों में लोग जमा करके रास्ता जो है उसको रोकने की कोशिश करें। तो अगर ये वाकई मुखलिस थे अपने बानियों में से एक बानी के साथ और ये चाहते थे कि उनका इलाज हो, तो फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गईं? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की, और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। उसके बाद अभी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान बार काउंसिल, सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी है वकला की पूरे मुल्क में, और पंजाब बार काउंसिल जो कि नंबर्स के हवाले से सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में और सबसे बड़ी बार काउंसिल है, दोनों ने अभी इलामिये जारी किए हैं कि कुछ वकला, कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और कुछ पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स अपनी जाती और इनफरादी हैसियत में बयानात जारी कर रहे हैं इस मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए, तो बार पॉलिटिक्स को इससे दूर रखा जाए। बकायदा तौर पे दोनों बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, अभी मैं सुन रहा था क्वेटा के भी अमायदीन इस पर बात कर रहे थे, तो ये बार काउंसिल ने क्लैरिटी दे दी है कि ये तरीके इंसाफ अपने सियासी एजेंडे के लिए वकला के जरिए बार्स को इस्तेमाल मत करे। ये एक और तरीका है सियासत में मुलव्वस करने का बार काउंसिल्स को और वकला को। जब नुमाइंदा बॉडीज के इलेक्टेड रेप्स जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से बकायदा लेटर पैड पर यह एलानिए जारी किए गए हैं कि बार्स को और बार्स की पॉलिटिक्स को इस मामले से बिल्कुल दूर रखा जाए, उनका कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से, तो ये चंद वकला ने बार पॉलिटिक्स को भी पोल्यूट करने की कोशिश की है और तरीके इंसाफ की सियासत के लिए उन्होंने इलामिये जारी किए हैं जो इलामिये जारी करने का वो इस्तेहकाक नहीं रखते थे और ना उनके पास ये इख्तियार था। तो बार्स ने तो अपना माइंड क्लियरली दे दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, पंजाब बार काउंसिल ने, दीगर भी दे रहे हैं कि हमें इस मामले से अलग रखें और चंद मेंबरान अपनी इनफरादी हैसियत में बयानात जारी करके हमें इस मामले में मुलव्वस ना करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी क्लियर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है और कोई इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी चीज क्लैरिटी के साथ बता दी गई है। और देखिए, जब मैंने ट्वीट जारी किया तो मैंने बताया कि क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक रिस्क क्रिएट किया है और जमा हुए हैं, इसकी वजह से उनको पिम्स ले जाया जा रहा है, और जब पिम्स में मुआयना कराया गया, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुआयना हुआ, तो वहां पर शिफा के जो ऑप्थमोलॉजिस्ट थे वो मौजूद थे। तो कोर्ट ऑर्डर की हर एक शिक पर इंप्लीमेंटेशन हुई है, शिफा के डॉक्टर्स की मौजूदगी वहां पर होना, जो ऑप्थमोलॉजिस्ट हैं, जिसको आप आई स्पेशलिस्ट हुरफे आम में कहते हैं, उनका वहां पे होना और मुकम्मल तौर पे चेकअप का कराया जाना, ये तमाम तर चीजें। और देखिए, जो उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बात की, जो एक रिव्यू का ग्राउंड भी है कि हम ये पूछने में हक बजानेब हैं, और रिव्यू पिटिशन के अंदर एक हमारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के बगैर ये शायद बताना मुमकिन नहीं होता कि इलाज कहां पर कराया जाएगा या कौन से डॉक्टर्स देखेंगे। जब तक मेडिकल बोर्ड अपनी राय नहीं देता, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि फलां अस्पताल में हो। और जिस तरह मैंने कहा, तमाम कैदियों को तो शायद ये सहूलत मयसर नहीं, मगर फिर भी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया गया, मुआयना कराया गया, शफाफ तरीके से कराया गया, हमशीरा की मौजूदगी में कराया गया और शिफा के ऑप्थमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में कराया गया। तो जो एक स्पिरिट थी उस ऑर्डर की, वो इंप्लीमेंट हुआ है। अब तरीके इंसाफ इस पर सियासत करना चाहे वो उनकी मर्जी है, मगर वकला ने भी कह दिया आप सियासत ना करें, हम भी आपको कह रहे हैं आप सियासत ना करें, मगर अगर आप अपने बानियों में से एक बानी की सेहत को लेकर सियासत करना चाहते हैं, आप करते रहिए। आपने रास्ता भी रोका उनका, आपने वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी पैदा की, आप अब भी इस पर अभाव क्रिएट कर रहे हैं। जो पिम्स की कल की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो जो पल्स है, जो ब्लड प्रेशर है, जो बाकी चीजें हैं, वो तो माशाल्लाह परफेक्ट हैं, आईसाइट भी 6/6 है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश हैं। बीमारी की नौयत, बीमारी की कोई संगीनी वो तो सामने नहीं आई है। तो ये किस बीमारी, मेरा अगला सवाल ये, किस बीमारी पर सियासत कर रहे हैं? यानी जो आप सियासत कर रहे हैं आप जरूर कीजिए, मगर बीमारी की नौयत देखे बगैर तो सियासत ना करें। तो ये एक लीगल मामला है और एक हेल्थ का मामला है। लीगल मामले की लीगैलिटी अलग है, उसकी मोडेलिटीज अलग हैं जो मैंने बयान कर दी, और एक सेहत का मामला है जिसको डॉक्टर्स ने देखना है, वो बेहतर राय दे सकते हैं और वो दे भी रहे हैं। और एक दिन भी हुकूमत ने इलाज नहीं रोका, इलाज होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी इसको सियासत की नजर मत कीजिए, ये लीगल और हेल्थ का मामला है, इसको उन्हीं डोमेन्स में रहने दीजिए। और आप कंटेंप्ट के मुर्तकिब हुए हैं इस पर सियासत करके, इससे भी गुरेज कीजिए, इसी में आपकी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया।
1: नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तारट की अहम गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतजामिया ने मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया। हमारा हमेशा से यह मौकिफ रहा है कि सेहत के मामले पर कोई सियासत ना की जाए। जब पीटीआई इक्तदार में थी तो सेहत के हवाले से हमारे लीडरान के बारे में तजहीक आमेज रवैया अख्तियार किए रखा। ये कैदी जब बरसर इक्तदार थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे, उनका तमस्खर उड़ाते थे। आज उनके मामले पर हमने ऐसा कोई रवैया अख्तियार नहीं किया। वज़ीर कानून ने वाज़ेह तौर पर मौकिफ दिया कि जो भी होगा वो कानून और आईन की रोशनी में किया जाएगा। तमाम लवाजमात उस ऑर्डर के तहत पूरे किए गए और सुप्रीम कोर्ट में के फैसले पर मिनवान अमल दरामद को यकीनी बनाया।
2: वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस।
3: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइतो जवाबित लागू हैं।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101।
3: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: There's music and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर

0: HBL Islamic आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो क्या

0: चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया, मैं थक सा।
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हजक साथ की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हजक सात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको फिर मिलके गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान

0: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को हर मुमकिन तआवुन की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की माशी तरक्की के एजेंडे की रफ्तार बरकरार रखने के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि इंतजामिया ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है। और आज नीदरलैंड में एफएएच हॉकी आलमी कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ।
2: There's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है। अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ। तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है। कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है तू। तेरी खुशबू और लिबास में मेरे, और कमरे में रखी तेरी शर्ट।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: Always ahead. FM 101.
0: This is FM 101.

चलें जी, यही आपको सुनवाना था, थोड़ा सा मूड अपना फ्रेश कर लें। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कहानी, और इस ट्रांसमिशन को आपके लिए डिजाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस सदफरानी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पिशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहां जहां मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहेंगे जी खुश आमदीद। ट्रांसमिशन के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप ज़राए क्या हैं, आप कहाँ कहाँ मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, जो जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप 4471 पे लाजमी मैसेज कीजिएगा। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। आज का टॉपिक भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे एक अदद पोस्ट मौजूद है, आपने उस पर कॉमेंट करना है, अपना फीडबैक देंगे और वहाँ के जो आपके पैगाम होंगे इंशाल्लाह मैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और 12:45 के बाद हम लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 1:45 से ऑनवर्ड, 1:45 से ऑनवर्ड जो है, हम जो है वो जो दोस्त यार जो हैं वो शायरी सुनाना चाहते हैं, जो दोस्त अहबाब जो हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आप जानते हैं कि 051-111-000-101 ये हमारा नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, 051-920-2540, आसानी से 920-2540 ये मैं अनाउंस करता रहता हूँ, ये भी आप लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का सबसे पहला जो मैसेज है वो अमीना हमारे साथ तलगंग से मौजूद हैं। आपका मैसेज का बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा जी बड़े से बाद आप शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको आज का मौज़ गुफ्तगू सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज किस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं, वो क्लियर भी आप जानते हैं कि मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि आपने इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखना ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। चूँकि आज जिस चीज़ से हम शुरू करेंगे वो ये कि आए हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिनका ज़िंदगी में आपके लिए बड़ा अहम किरदार रहा है। तो दोस्तों टॉपिक कुछ इस तरह है, ये मैंने एक जगह देखा था, पढ़ा था, सुना भी था, तो मैंने कहा आप लोगों से इस हवाले से शेयर करूँगा कि अगर आपको कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसे आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो कौन है और क्यों आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। मतलब मैं आसान अल्फाज में फिर समझा दूं, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स जिसे आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहें, वो कौन है और वो क्यों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स तो बिल्कुल भी आपने उनका नाम नहीं लेना, वालिदैन, चूँकि सारी ज़िंदगी अगर हम उनका शुक्रिया अदा करते रहें तो वो कम है, वो उनके एक दिन जो उन्होंने हमें पाला पोसा उसमें वो नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक ऐसा मेंटोर, कोई एक ऐसा उस्ताद या आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स जिसे आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहें, वो कौन है और क्यों आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, ये आज का हमारा मौज़ गुफ्तगू है। इस पे आप लोगों ने कमेंट करना है 4471 पे, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप लोगों के मैं पैगामात प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और होगा आज के प्रोग्राम में कुछ हल्ला गुल्ला, तो आपने मेरा साथ देना है, मैसेजेस आपने लाजमी करने हैं जी 4471 पे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कबूतर है, कबूतर मतलब रात के इस पहर अंधेरे में आप लोगों के मैसेजेस जो है वो हम तक पहुंचाता है। कभी ये काम जो है वो दोस्त और सहेलियां क्या करती थी, खतों वाला जमाना याद है आपको, वैसे आप खत के वाले से भी बात करेंगे, अल्लाह लो लिख दिया करो आजकल दे दौर, मुझे पता है कि AI का दौर है, इतना ज़्यादा इंसान के पास टाइम नहीं होता लिखना, लेकिन प्लीज़ ख़त की जो इम्पोर्टेंस है ना। 12:22

अली भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की है और इस वक्त जितने भी यंग जनरेशन सुन रही है और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए बहुत एक पॉजिटिव मैसेज और एक पॉजिटिव सोच. आपने कहा जी मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पे उम्मीद रखी और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा जो मैं करना चाहूँगा वो खुद का करना चाहूँगा. और आपने कहा जब कोई नहीं मेरे साथ था सिर्फ मैंने अल्लाह से उम्मीदें रखी और उसने मेरी तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरी की, मुझे जो है उन्होंने स्ट्रेंथ दी और काफ़ी मोटिवेट रहे. आप कभी उम्मीद नहीं आ रही. हमारे सीनियर आरजे रिजवान भाई कहते थे कि उम्मीदी उम्मीद के हवाले से बात करते थे, कहते थे ना उम्मीदी जो है वो कुफर है, ना उम्मीद नहीं करना होना चाहिए इंसान को कभी भी. होप जो है इसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए. और अली भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. और ये वही टैग लाइन कि मैं खुद का फेवरेट हूँ या मैं खुद की फेवरेट हूँ, होना भी चाहिए, कहना भी चाहिए. लोग सेल्फ मेड बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए या एजुकेशनल जो आपका करियर होता है उस तक, किसी भी मामले में जब लोग खुद से मोटिवेट होके सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प मांग के और जो खुद से मेहनत करते हैं ना, वो हमेशा इस तरह का कमेंट करते हैं. अली भाई बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. कहाँ से आप सुन रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आपने कभी उम्मीद नहीं आ रही और बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आपने किया, बहुत शुक्रिया. वकास तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है जी, और फर्स्ट टाइम मैसेज किया आपने, बहुत शुक्रिया. अम्बरीन आप मैसेज करिए, मेरे साथ खासकर केमिस्ट्री के प्रोफेसर सर उस्मान, मेरी क्लास फेलो आसिया, बरीरा, फरीहा और अलगर्ज, सब असाध्या इकराम और क्लास फेलो का शुक्रिया अदा आप करना चाहेंगी. मैं किसी एकदा ना पूछा सी. बहरहाल बहुत शुक्रिया जी. जिमल जदून आपके मैसेज का वालेकुम सलाम. इसके अलावा साइम तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई. मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आपने कहा जी आप बात बहुत मुनफरद अंदाज में करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त भाईजान. मैं आपको पेरिस फ्रांस से सुन रहा हूँ और एक सॉन्ग लगा दो इब्रारुल हक का, मुझे माही याद आता है, माही याद आता है. मेरे दोस्त इब्रार के ट्रैक मैंने शुरू में शामिल किया था लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि परदेसियों के हवाले से ट्रैक. मैडम माजबीन हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम आरजे गजन फिर वेलकम, बहुत शुक्रिया जी. आप भी ज़रूर बताइएगा जो आज हमने टॉपिक रखा है इस हवाले से, अपना फीडबैक जो है, अपनी राय का इजहार आप लोग लाजमी किया करें ताकि दिल को अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं. और कौन है वो शख्स आपकी ज़िंदगी में जिसे आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्यों, ये लाजमी बताना आपने. ब्रोकन एंजल इसका ट्रैक ऑफिशियल ओरिजिनल जो हमें प्ले करता रहता हूँ, आज थोड़ा सा रिमिक्स वर्जन सुनिएगा जी, हल्का फुल्का मजा आएगा आपको, मूड फ्रेश कर लें जी अपना. मौसम बहुत तो बहुत ज्यादा प्यारा है. मैं अभी भी जब स्टूडियो आया तो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में बन रहा था,

12:38 हुआ चाहते हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बता रहे हैं। हमारे साथ निमरा शाह मौजूद हैं लाहौर से, आपने मैसेज किया 4471 पे, आप कहती हैं कि सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा जी मैं अपने बड़े ब्रदर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि फ्लैश बैक में उन्होंने ऐसी बहुत सी मेमरीज दी हैं जिन्हें याद करके बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच निमरा, आपने मैसेज किया लाहौर से। और बहनों के हवाले से मैं जब भी प्रोग्राम में इस तरह का कोई मैसेज आता है तो एक बात हमेशा कहा करता हूँ, चूँकि आजकल की इतनी मसरूफियत वाली ज़िंदगी हो चुकी है, हर बंदा जो है वो अपने अपने काम में मसरूफ़ है, ख़ानदान बड़े हो रहे हैं और जब अपनी शादी हो जाती है फिर अपने जो फैमिली के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ इंसान मसरूफ़ रहता है। तो भाई जो हैं इस वक्त मेरी आवाज़ अगर आप लोग सुन रहे हैं, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो रहमत है बेटी जिसे कहते हैं सबको दी हैं, और वैसे सबके पास नहीं भी होती, लेकिन जिन जिन दोस्तों के पास ये नेमत है बहनों का लाजमी वादा किया करें, ख़ासकर उनका जिनकी शादियां हो जाती हैं, आप घरों से दूर हैं और बाज़ों का तो शहर से भी बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, मतलब कराची लाहौर तो चलो फिर 2-2.5 घंटे की ड्राइव में, 4 घंटे की ड्राइव में इंसान इस्लामाबाद से पहुंच जाता है। किसी भी एरिया में ऑब्वियसली कुछ के नसीब बहुत करीब होते हैं और कुछ बहुत दूर, कुछ तो ऐसी हैं माशाल्लाह वो मुल्क से ही बाहर हैं, तो पता लाजमी किया करें हर दूसरे नहीं तो तीसरे दिन फ़ोन करके, ताकि उनका भी जो है आप इमेजन नहीं कर सकते कि कोई बहन जब भाई का फ़ोन आता है वो सुनने के बाद उसके ब्लड में कितना इजाफा होता है, कितनी खुशी होती है, और एक ना वो एक धाग सी बैठती है उनके ससुरालियों पे कि यार को पता करने वाला है, अपनी बहन का पता कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकल लाजमी किया करें 3-4 दिन बाद फ़ोन, एक तो कोशिश करें कि अगर आप डेली करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं फैमिली के, रोज़ाना जो है घर का बड़ा जो है ख़ासकर माएँ जो हैं वो फ़ोन कर लेती हैं, कभी एक बेटी को कभी दूसरी को, लेकिन भाइयों का फ़ोन करना और इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक डिफरेंट वाइब भी आती है, बहनों को भी पता चलता है कि हमारे सर पे कोई है, और जो उनके ससुराल वाले लोग हैं उनको भी एक चीज़ का एहसास होता है कि इधर कोई पता करने वाला है। ये लाजमी दोस्तों आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में अपनानी है। तो नमरा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज से, ये बात हमें जहन में आई तो हमने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। समरा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, समरा कहती हैं जी बहुत ज़्यादा माइग्रेन है, अल्लाह ताला जी आपको सेहत दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें, अल्लाह ले ख्याल रखिया करो अपना।

051-111-0101 पर 200 इस ट्रैक के बाद आप लोगों की लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 051-920-2540-920-2540 ये भी हमारा टेलीफोन नंबर है। 051 का आपने कोड ऐड करना है, देन आप हमसे गपशप कर सकते हैं। 4471 पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने मैसेजेस करने हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। आजकल जब भी घर से आप बाहर जाते हैं या दूर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो वेदर एडवाइजरी जो है बराए मेहरबानी वो देख लिया करें। गूगल हर किसी के पॉकेट में मौजूद होता है, तो वेदर कंडीशन देख लिया करें और 10 से 15 मिनट का वक्फा यानी गैप रखे आप लोगों ने घर से निकलना, मतलब अर्ली कहीं पर भी जाएं 10-15 मिनट जल्दी आप निकल जाया करें, चूँकि बाजू का ट्रैफिक, चूँकि जब बारिश होती है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर से गाड़ियाँ भी निकालते हैं जिन्होंने कपड़ा डाल के रखी है। सिर्फ मेरी तरह जब बारिश होगी तब घर से बाहर निकालेंगे, चूँकि अदरवाइज पेट्रोल जो है वो अफोर्ड करना अब बहुत औखा हो चुका है जी। इस बात पे तो आप मेरे साथ आमीन कहेंगे ना। शफकत हमारे तले की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तू ही मेरा इसका ट्रैक टाइटल है इसका, और ये खुलेआम कह रहे हैं कि तू ही मेरा।

चलें जी नेक्स्ट कॉल से पहले कुछ आपके फेसबुक के मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. facebook.com/fm101channelpakistan. आप लोगों ने जी इस पोस्ट को अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है. इसके अलावा आरजे गजनफर महमूद क्यानी के नाम से भी एक अदद पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. और अब तक जो कमेंट्स की तादाद, मुझे लास्ट टाइम पता चला था कि कुछ एरियाज में ना लाइट चली जाती है और वहाँ पे आप लोग के पास रेडियो की ट्रांसमिशन नहीं पहुँच पाती. तो जो लोग वेब स्ट्रीमिंग के जरिए सुनना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि अब कुछ आई थिंक टेलकोज ने कुछ सेटअप इस तरह का कर लिया है कि जब लाइट नहीं होती तो इंटरनेट भी उस तरह नहीं चलता, आपका डेटा पैकेज जो है वो भी उस तरह नहीं चलता. एक टाइम पहले हुआ करता था, पहले भी बाजू का जब लोड शेडिंग का दौर चला था उस टाइम इंटरनेट की स्पीड ठीक रहती थी. ये मैं आपके जो इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल के जो आप सिम पे जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसके डेटा पैकेज की बात कर रहा हूँ कि वो अच्छा चलता था. लेकिन अब जिस एरिया में लाइट जाती है आई थिंक वहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट जो है वो मर मर के चलता है. जिमल जदून गजनफर भाई आरजे इरफान कुरैशी की दरगाह में, जिमल उनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता. हमारे साथ डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हैं जी. आरजे आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच एंड आई हैव लर्न फ्रॉम यू. बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा जी काफ़ी कुछ सीखा, आप हम्बल पॉजिटिव. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा. अगर आपने हमारे प्रोग्राम से किसी भी कोई पॉजिटिव मैसेज गेन किया है तो बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. स्टे ब्लेस और हैप्पी बर्थडे आपने एडवांस कह दिया जी, कुछ ज़्यादा एडवांस कह दिया आपने, बहुत शुक्रिया. नदीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपने कहा जी म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है. नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया. मैडम आजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मैसेज को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं. आप कहती हैं मेरी ज़िंदगी में एक ही शख्स है जिनका मैं कभी मुकम्मल शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपको सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत होती है वहाँ अपने नहीं थे लेकिन वो थे और ज़िंदगी की धूप छाँव में हमेशा साथ रहे. ऐसे लोग इंसानियत का मान होते हैं और इनको मसीहा कहा जाए तो ये उनका हक है. अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी सलामत दे और जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन. बहुत शुक्रिया जी, बहुत कीमती वर्ड्स थे आपने जिसके लिए भी ये कहे हैं. बहुत लकी पर्सनैलिटी हैं वो, अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी में. मतलब आज के प्रोग्राम का ये थर्ड मैसेज है. एक हमें 4471 पे निम्रा का मैसेज था जिन्होंने अपनी बड़ी बहन का शुक्रिया अदा किया था. तो नज़ीर साहब ने किसी शख्स का बताया और इसके अलावा मेरे एक और दोस्त थे, उन्होंने एक फैमिली का जिक्र किया एक दोस्त का. और अब माजबीन आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया जी. बिस्मिल्ला साहब जी, बिस्मिल्ला फूड्स के नाम से एक आईडी है. सिर्फ कल कब आपने शो के स्टार्ट में एक गज़ल प्ले की थी, मैंने सर्च की नहीं मिल रही. मैंने तो कल तो प्रोग्राम नहीं किया, मैंने कल खुर्रम भाई का प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता कि खुर्रम भाई ने क्या वो प्ले किया था. गुजर खान से आप मौजूद हैं, अपना नाम ज़रूर बताया करें. हसन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योर से. आपका प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प है, चंद अशार आपके लिए प्यारे भाई. अशार 145 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे लेकिन आपने लिख भेजे हैं. ये चमन ज़रा ये जमुना का किनारा ये महल, काफ़ी मुश्किल शायरी मेरे दोस्त आपने लिख भेजी है. आई विश कि आप हमें ये सुना सकें. 145 से ऑनवर्ड आप लोग कॉल कीजिएगा, देन मैं आपका कॉल लाजमी शामिल करूंगा. शायरी का हमारा वो सेगमेंट है. नदीम अवान हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी नदीम भाई, आप ज़रूर पूछें. और अली हैदर साहब, आई एम लिसनिंग यू फ्रॉम नारोवाल. नारोवाल से आप सुन रहे हैं जी. आपका पहला मैसेज था जो बहुत पॉजिटिव था, आप मतलब वो पर्सनैलिटी थे जिसने कहा था कि मैं अपने आप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और सबसे मुश्किल लड़ाई जो होती है, सबसे मुश्किल इम्तहान जो है वो आपका अपने साथ होता है. इंसान कोई भी ज़िंदगी में फैसला करता है उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने एक चीज़ ठान ली है करने की, उसमें आप अल्लाह से मदद मांगें और रेगुलरली कंसिस्टेंसी से अगर वो काम करते रहेंगे वो हो जाएगा. ये बात मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि काश वज़न कम करने वाली डाइट शुरू कर दूँ मैं.

0: इस ट्रैक के बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देन इंशाल्लाह 145 से ऑनवर्ड आपकी शायरी जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं सजाद भाई को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, चूँकि सजाद भाई जब अपना प्रोग्राम करते थे रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो आखिरी 15 मिनट सजाद भाई से गपशप हो जाया करती थी।
1: जी

क्या जबरदस्त लिरिक्स है दोस्तों। अगर आपको, अगर आपने फील किए हैं इन लिरिक्स को और यकीनी तौर पर आपने एंजॉय किया, कि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्शन महसूस हो रही है, सबसे पहले तो इन्हें ठीक कर लेते हैं जी।

ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं। 1:34 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2:15 तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं। ताल्लुक मेरा जन्नत नज़ीर से है, जिसे कहते हैं कश्मीर, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर और मुल्तान और पूरा पाकिस्तान। इसके अलावा वेब स्ट्रीमिंग के जरिए आप दुनिया भर में जहाँ पर भी मौजूद हैं हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। मेरे अलावा ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत आवाज़ें, बहुत खूबसूरत शख्सियात जो हैं आपके लिए पेश करती हैं। 101 इस्लामाबाद से अगर बात की जाए, हसनैन रज़ा हमारे सीनियर आरजे हैं, ज़िशान नासिर ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। इसके अलावा जो है और भी दोस्त जो हैं वो 101 इंटरनेशनल जो है वो आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। कुछ दिन इस्लामाबाद से प्रोग्राम होता है, कुछ दिन जो है वो लाहौर से होता है। इसके अलावा हमारे खुर्रम बेग आरजे आतिर भाई, आतिर अली सैयद इतवार की रात को प्रोग्राम करते हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसी तरह लाहौर से बहुत खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो 4 चांद लगाते हैं इस प्रोग्राम में। तो इस ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक चीज़ जहन में आई, मैंने कहा वो आपसे शेयर कर दी जाए, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। एक SMS समर फातमा आपने किया है, वो मैं रीड कर लेता हूँ। थैंक यू, काफ़ी लेंथी डिटेल में आपने मैसेज किया है, खुश रहें आप जी। हर दिल में एक कहानी छुपी होती है दोस्तों, कुछ कहानियाँ लफ्ज़ों में बयान हो जाती हैं और कुछ खामोशियों में उम्र भर जो है दफन रहती हैं। इसलिए लोगों के साथ नरमी से पेश आया करें, क्योंकि हर दिल जो है वो अपने अंदर एक अनकही दास्तान लिए फिरता है। मतलब हर किसी की एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट कहानी है। मैं पहले भी कहा था कि आप किसी से भी कोई बात, आजकल एक तो वैसे ये है ना, ये तो मैं वैसे एक फ़नी वे में एक बात कर रहा हूँ, किसी दोस्त को आप कुछ छोटा सा अपना दुख सुनाएं ना, वो आपको अपनी तरफ से ना 250-300 दुख सुना देगा। आप उसे कहेंगे रहन दे यार, छाड़ दे, मैं तेनों कुछ दसना ही नहीं। तो कोई भी इंसान जब आपसे ना अपने दिल की बात कर रहा हो या कोई तकलीफ़ आपके साथ शेयर कर रहा हो, घरेलू मामलात के हवाले से हर किसी के ना पेचीदगियाँ चल रही होती हैं, तो उसको एक तो सुना करें, और सुनने के भी ना कुछ आदाब हैं एज ए लिसनर। वैसे हम रेडियो की जब बात करते हैं ना, अच्छा लिसनर वो है जो खामोशी से सुनता है और बात पे अमल भी करते हैं, और अगर कोई चीज़ उनको गलत लगती है वो बताते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो मैं ख़ुद अपनी तस्वीर फ़ौरन से कर लेता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ऑन एयर, चूँकि स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में स्टैट्स गलत बता देना, इस प्रोग्राम में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो इररिलेवेंट है उसके लिए भी माजत कर लेता हूँ। तो आप लोग भी जब आप पॉइंट करते हैं कि यार ये चीज़ आपने गलत बताई है, तो उससे ना बड़ा आसरा होता है। जब भी कोई परेशानी आपके साथ अपनी शेयर कर रहा हो या कोई भी दुख, बहुत तसल्ली से उसको सुना करें। अपना ये टेलीफोन जो है, फ़ोन के अरे कई जो माशरती चीज़ें हैं उसको ख़राब करते हैं। मतलब अब एक बंदा मुझे कोई दुख बता रहा है या मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है, मैं टेलीफोन यूज़ करते हाँ हूँ ठीक है ओके, ये देखें अदाब के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना ख्याल रखा करें, बुज़ुर्गों के सामने फ़ोन इस्तेमाल मत किया करें, और जब कभी इस तरह की कोई डिस्कशन चल रही हो तब इसको ना बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें, एक चीज़ ये। सेकंड ये कि अगर आप चूँकि देखें आप बड़े लकी इंसान हैं कि उसको अल्लाह ताला ने उसका आपका नाम उसके जहन में डाला होता है कि यार आप ये प्रॉब्लम जो है इससे जो है वो शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हल जो है वो पैसा है, कि मतलब आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी की हेल्प करेंगे, पैसा है तो आप किसी के काम आ सकते हैं। नहीं जी, साथ खड़ा होना, अच्छा मशवरा देना, ये मशवरा जो है ये बहुत बड़ी इमानत होती है दोस्तों। ये किसी को देना ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं जो एक चीज़ हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना ये इसको इम्प्लीमेंट भी करूँ, कुछ चीज़ों में लाइल्मी जो है ना वो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अगर नहीं बताना तो उसी में आप बहुत राजी खुशी हैं। बेतहाशा मरतबा मेरे साथ इस तरह हुआ, आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें इस तरह हुई होंगी कि कुछ चीज़ें जब आपको पता चलती हैं बड़े हैरान होते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि यार कैसे हो सकता है यार, ये शख्स या ये इंसान या ये बंदा या बंदी मेरे साथ, मतलब हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे कर सकता है, कैसे मेरे बारे में बात कह सकता है या मेरे लिए ये कुछ कर सकता है। तो लाइल्मी कुछ मामलात पे अल्लाह की बहुत बड़ी
ब्लेसिंग होती है। तो मैं इस चीज़ को ना इस तरह रिलेट करता हूँ कि बाजू का एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक तो ये है ना कि वो कहते हैं कि हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, तो सिलसिला ये था कि बस थी दुआ सलाम उनके साथ, उनको टेलीफोन किया, कोई काम वगैरह था, कुछ उनके भी काम का। एक तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, ये सब तो बड़ी जो है हमारे यहाँ ना ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी के लिए आपने अल्लाह ने ही आपको वसीला बनाया, कुछ कर देते हैं तो आप रिटर्न में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ काम थे जो हुए हम, और उसके बाद फिर एक कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमें ज़रूरत पड़ी, हमने उनसे बात की, तो वो भाई साहब, ये वैसे आप में से भी बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ इस तरह हुआ होगा, फ़ोन बंद करना वो भूल गए। मतलब ठीक है, हमने जो भी बात करनी थी आपस में क्यों होगी, अल्लाह हाफिज़ हो गया, ठीक है, और वहाँ से फ़ोन बंद नहीं हुआ। और हम अमूमन ना ये हमारी एशियन ज़्यादातर, ख़ास कर मैं अगर कहूँगा कि ऐसे पाकिस्तानी भी, हमारी ये आदत है कि फ़ोन बंद करने के बाद ना कुछ कमेंट्स हम ज़रूर पास करते हैं, चाहे वो कोई भी है, आपके मैनेजर हैं, आपके उस्ताद हैं, घर में भाई है, बड़ा बहन है, ये कोई भी है, तो हम कुछ ना कुछ जिस हवाले से भी बात होती है ना तो बात कर देते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं ये मशवरा दूंगा कि किया ही ना करें, अगर अच्छी बात है तब कर दें, कुछ आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो किया ही ना करें। अगर आप फिर भी नहीं बात आते तो एक दफ़ा फ़ोन देख लिया करें कि ऑफ़ हुआ है, क्योंकि ये जो एंड्रॉयड हमारे फ़ोन है, बाकी जो महंगे फ़ोन वाले माशाल्लाह जिन्होंने बड़े महंगे महंगे फ़ोन रखे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा सा टाइम बाद ही कॉल आई थिंक डिस्कनेक्ट होती है इसकी, तो उन्होंने कॉल बंद नहीं की। तो जो काम मैंने उनसे कहा उन वो ले के साथ दो तीन जुमले और गए, फिर मैं दोबारा उन्होंने फ़ोन किया, मैं क्या सुने तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुहाडी बहुत मेहरबानी, बस आहो। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं कि ला इल्मी जो है वो कुछ चीज़ों के हवाले से ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो होती है। तो अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनसे भी आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बाजू का जब आपकी टूटती हैं तो आपको चीज़ों का एहसास होता है। बहरहाल 1:41 हो चुके हैं जी, अब हम आपकी लाइव कॉल जो है वो शायरी के ही सेगमेंट में शामिल करेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी कॉल करेगा 1:45 के बाद प्लीज़ इसको फॉलो करें, इस रूल को, ये मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ शायरी के हवाले से, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि शायरी का भी एक सीज़न होता है उनके ज़िंदगी में, मतलब एक दफ़ा ऐसा वैसे जिक्र हुआ शायरी के हवाले से, वो कहते हैं आजकल मूड नहीं, आजकल माहौल नहीं है, या इस तरह का कुछ जुमला बोला था, मेरी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है, कि आजकल ना शायरी का मूड नहीं है या आजकल शायरी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे भी दोस्त हैं देखें जी, वो मूड के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मुझे वैसे अच्छी लगती है, पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, ऑन एयर में इतनी ज़्यादा शामिल नहीं करता, हमारे बाकी दोस्त अपने प्रोग्राम्स में बहुत शायरी पढ़ते हैं, यूसुफ बहुत अच्छी पढ़ता है, खुरम भाई हैं, हसनैन भाई मेरे ख्याल से मेरी तरह वो इतनी शायरी की जानिब नहीं जाते, निशान भाई वो पढ़ते हैं, लाहौर से जो है वो हमारे आरजेज़ बहुत अच्छा जो है शायरी का अंदाज़ है उनका। तो एक लाइन जो है मैं भी आपको दूंगा, आपने उसको ना कंप्लीट करना है, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि शायरी का माहौल आजकल नहीं है, तो एक लाइन मेरी तरफ से होगा शेर, आपने उसको मुकम्मल करना, लास्ट टाइम चुके वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इस तरह किया था तो ऑन एयर एकदम पूछ लिया था, तो ऑब्वियसली बंदे को एकदम चीज़ें याद नहीं रहती, तो मेरी जानिब से जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह है कि तुमने शाम देखी है ढलती हुई, नेक्स्ट लाइन आपने मुकम्मल करनी है, मेरी जानिब से जो दोस्तों लाइन है वो ये है, तुमने शाम देखी है ढलती हुई, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास इसका जो नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है। 0:51:111:0101 1:45 से ऑनवर्ड जो है वो दोस्तों आपकी लाइव कॉल्स हम शामिल करेंगे, उसमें जस्ट आपने अपना नाम बताना है और आपने जो है वो जो कुछ कलाम सुनाना चाहते हैं वो सुनाना है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा, मैं आपको तंग नहीं करूँगा कि सेहत का क्या हाल है, खाया पिया क्या है, ये चीज़ें, ठीक है। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू द शो, फ्रॉम लाहौर से आप पार्टिसिपेट करें। सारा अली, सारा आई थिंक लाइट नहीं की आज आपके यहाँ, हेलो गजनफर भाई मैं बिल्कुल ठीक, जिमल जदून गजनफर क्या नहीं भाई, मैंने जिशान आसिफ भाई का थैंक्स करना है क्योंकि उनसे जो मैंने सीखा वो शायद कभी नहीं सीख सकती, अगर 1-on-1 के साथ कनेक्ट ना होती तो फिर जिशान भाई को ना सुना होता, थैंक यू सो मच जी जिशान भाई का, आपने शुक्रिया अदा किया, ढेर सारी उनके लिए दुआएं दी। तायरा मसूद हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम,
और ये कुछ मैसेजेस थे 44 सॉरी facebook.com/fm101 के। चंद ही सेकंड के बाद दोस्तों जो है वो हम आपके नाम जो पोइट्री है उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपने मेरे साथ साथ रहना है।

ये सेगमेंट शुरू करने से पहले एक चीज, समर फातिमा थैंक यू सो मच, जो आपने एक मैसेज के भेजा था वो मैंने मुकम्मल रीड कर लिया है। वो रैंडमली होती है वो लाइंस, वो आपने बिल्कुल ठीक अदब के हवाले से बात की है, वो रैंडम लाइन होती हैं। तो आपने जब मैंने आपके इस मैसेज का रिस्पॉन्स किया, आपने रिवर्ट में मैसेज ज़रूर करना है ताकि मेरी जानिब से जो एक कुछ वो रैंडम लाइंस होती हैं बेसिकली, ऐसा हरगिज़ देंगे 0

भी मैं 50 भी

0: अबासी साहब, चले जी देख लेता हूँ, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सलाम अलैकुम। वालेकुम
1: वालेकुम सलाम जी साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। अपना मोहम्मद
1: सलमान भाई सलमाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: सलमान साहब लाहौर से मौजूद हैं क्या?
1: मैं शुरू से शायरी तो मुझे इतनी नहीं आती, वो पूछा था कि आप किसका शुक्रिया अदा करना। दो मिनट की बात, एक सेकंड की करूंगा। अल्लाह का इतना शुक्र है कि माँ बाप से लेके तमाम रिश्ते, तमाम जो भी कारोबारी जो भी मिले हैं, सारों ने इज्जत दी है, सबका शुक्रिया अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जजाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया।
1: सबने बड़ा प्यार और सबने बड़ी इज्जत दी है,
0: बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत
1: शुक्रिया। प्रोग्राम मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, कराची में कॉल ये इस्लामाबाद मिलती नहीं है, पर आज मिल गई, बड़ी खुशी हो रही है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: आपकी मिठास, मीठी मीठी मीठी आवाज है, बहुत मजा आता है,
0: जजाकअल्लाह,
1: बहुत ही मजा आता है।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
1: आप कश्मीर से आते हैं? कश्मीर से
0: जी, मैं बेसिकली हूँ कश्मीर, रिहाइश ने इस्लामाबाद में ही है।
1: हमें तो कश्मीर के लोग वैसे बड़े अच्छे और मीठे
0: चलो, जजाकअल्लाह जजाकअल्लाह,
1: आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। 1:57 हो चुके हैं जी। नेक्स्ट कॉल हमारे साथ कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? फैजा बात कर रही है। फैजा, क्या सुनाएंगे आप हमें?
2: मैं आपको एक गजल सुनाऊंगी शक।
0: अच्छा, गजल सुनाएंगी, सुनाए फैजा।
2: मेरी शायरी पे उससे शक रहा, मेरी शायरी पे उससे शक रहा, मैंने कहा जज्बात बनते हैं अल्फाज, उसे शक रहा, कांपते होंठों से रेगी पलकों से, लिखी जो मैंने मोहब्बत के दास्तां, उसे शक रहा, मिली जो खबर उसे मेरे बीमार होने की, मैं वहां तड़पती रही और उसे मेरी बीमारी पे शक रहा, मिल जाए एक बार वो मुझे आकर, मेरी दुआ दवा वही है, मेरी आंखों में उसका अस एक शक रहा।
0: क्या बात है फैजा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ख्याल रखना पड़ेगा,
2: ठीक
0: है, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या सुनाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नाम बता दीजिएगा अपना। चले, इस शो में पहली दफा आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने कॉल की है, क्या सुनाएंगी आप?
2: आपने एक लाइन दी थी, वो जरा रिपीट करेंगे आप?
0: चले आप अपना वो सुनाए, वो आज से हम कैंसिल कर देते हैं, वो कुछ
2: नहीं, मेरी पास उससे रिलेटेड की एक लाइन है, वो अभी रह नहीं थी।
0: अच्छा, जो उससे रिलेटेड लाइन थी वो आपने लिखी थी?
2: नहीं, लिखी नहीं थी, अभी जहन में आई थी, आप बता।
0: मेरी लाइन जो थी वो ये थी कि तुमने शाम देखी है ढलती हुई,
2: मैंने किस्मत देखी है बदलती हुई।
0: आपने किस्मत देखी है, बहुत अच्छा आपने वो अटैच किया। आप अपना कुछ नहीं सुनाएंगी?
2: सुनाऊंगी वो कुछ इस तरह से, ऐ जज़्बा-ए दिल, अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो काम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ख्याल रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। 051-920-2540, वो जिन्होंने कहा था कि आप नंबर बहुत तेज़ी से बताते हैं, 051-920-2540, 920-2540, 9-20-25-40। रेडियो तो भी लाइट चली गई, बिल्कुल नेहरा ही हो गया थे।

0: ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਸਰ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸੁਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇ।
1: ਬਹੁਤ
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨਤ
1: ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਗਈ।
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
1: ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ।
0: ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪੈਣ।
1: ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ 101 ਫਤਵਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁਣਾਈ ਚੋ? ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ
1: ਜੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਸ਼ੇਰ ਜਰਾ ਦਿਲਾ ਬਰਾਤ ਰੱਖੀ ਕੇ ਨਾ
0: ਰੱਖੀ ਕਿਦਾਂ ਬਗਾਓ
1: ਰੱਖੀ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰੋ ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋ ਸਦਾਏ ਕੈਸੀ, ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋ ਸਦਾਏ ਕੈਸੀ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਆਂਸੂ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਸ ਲੇ ਲੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੋ ਯੇ ਸਦਾਈ ਕੈਸੀ।
0: ਯੇ ਸਦਾਈ ਕੈਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਯੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਆਪ, ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੀਚ ਮੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਆਪਕੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਣਾਏ ਸਰ।
2: جب ہرا دے مقدر کی جانوں کے دکھ، جن کی آنکھیں نہیں وہ نہ رائیں کبھی، جان جائیں اگر آنکھ والوں کے دکھ، میری منزل کہاں، ہم سفر ہے کدھر، مار ڈالیں گے اب ان سوالوں کے دکھ۔ تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے،
0: وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا دوستو یہ ڈسٹرکشن والے معاملے پہ میرے پہ نا تھوڑا بہت ریمپ کھا لیا کریں، ہیڈ فونس جو پہنے اس میں یہ 4 times ملٹیپلائی ہو کے آواز کانوں تک پہنچتی ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔
3: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
3: انیلا فرام لاہور۔
0: انیلا فرام لاہور، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
3: جی، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، اچھی رونق ہے۔ اور غزنفر آج تو کال ملانا مجھے لگ رہا تھا ناممکن ہوں گے۔
0: نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے
3: لائٹ کے مسئلے یہاں بھی ہو رہے ہیں، لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے
0: ادھر۔ تو تھوڑی دیر پہلے میں مجھے اپنی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، میں ظاہری بات ہے ہمارا اسٹوڈیو اتنا بڑا ہے، ویسے ڈر لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہلکی سی بھی نا کھڑکھڑ ہوتی ہے، تو میں نے تو کہا تھا بس گیا پھر آج۔
3: میں چونکہ ادھر ڈرائنگ روم میں آ جاتی تو ادھر اتنا سناٹا ہوتا ہے، یہ پنکھا شور کر رہا ہے، جب یو پی ایس پہ چلتا تو پنکھا شور کرتا تو پتہ چلتا نہیں سب ٹھیک ہے۔
0: سب ٹھیک ہے، کیا سنانا چاہیں گے آج؟
3: پتہ نہیں میں نے کیا کیا سنا، نہ پہلے سیگمنٹ میں کال لگی ہے نہ چلے خیر۔ اور جو میری شاعری پڑھنے کے انداز کو نذیر بھائی اور باقی سب پسند کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔
0: نہیں نہیں آپ بہت اچھے انداز میں پڑھتی ہیں۔ آپ نے جو لاسٹ ٹائم پڑھی تھی نا اس کا نام مجھے ضرور بتا کے جائیے، کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ وہ غزل سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے خود ایک وہ الماری والا مصرعہ یاد تھا اور ایک وہ
3: جی جی وہ ہے شاعرہ ہے ایک جانا ان کا نام ہے۔
0: ٹھیک ہے، تو وہ اگر کسی نے سرچ کرنی ہو تو وہ کیسے کریں گے؟
3: وہ شروع میں ان کا جانا ان کا نام لکھیں گے اور ان کی جو شاعری ہے نا وہ لکھیں گے کہ تیز ہوا کے جھونکے टकराते हैं पेड़ों से,
0: ठीक है,
3: ये पहली लाइन लिखेंगे उनकी पूरी शायरी आ जाएगी।
0: ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब
3: और जी जी, अब मैं कुछ लाइनें सुनाती हूँ।
0: जी जी।
3: रंजे बेअदाई क्या, ज़ौमे आशनाई क्या, माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, बेयकीन रफाकत में वसल क्या जुदाई क्या, जब से तकल्लुम तक सब का सब ही धोखा है, जब से तकल्लुम तक सब का सब ही धोखा है, दिल में क्या समाया था लग पे बात आई क्या, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, शोर गुल में दुनिया के दुंगा में सुनाई क्या, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, दिल चले या घर जाकर इश्क में दुहाई क्या।
0: क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे अंदाज में आप हमेशा शायरी पढ़ती हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट।
3: शुक्रिया, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे अक्सर आज सुन रहे होते हैं तो साथ साथ थोड़ा सा ना वाह
0: अपनी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे आप सुना रही थी ना, मैं बीच में अगर इस तरह बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं ऑनर ही हूँ, ठीक है, बाज़ का तो होता है ना आवाज कर
3: जाती है, आतर के शो पे हम आते हैं ना तो हम पढ़ते हैं ना तो आतर साथ साथ मतलब पुशअप करते हैं, मतलब
0: हाँ हाँ
3: करते हैं तो वो दोनों की आवाज आ रही है।
0: ठीक हो गया, ठीक है,
3: आप क्या करें, हमें लगता है तो दमसा से बाहर चार तीन चला गया लपो से, ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, 2:08 हो चुके हैं जी, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि रात के इस पहर आप रेडियो ट्यून करके हमें सुन रहे हैं और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है, आई थिंक जो लाइट का जो असर है वो इधर भी टेलीफोन तक भी पहुंच चुका है जी। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल, मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, इस ट्रांसमिशन को आपके लिए डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस दफरानी, हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुम्मा रात 8 से 10, जबकि हफ्ते और इस इतवार के दरमियानी शब यानी हफ्ते की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपसे मुलाकात रहती है और इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नाम बता दें अपना भाई।
4: मोहम्मद अब्बास, मोटर उस्ताद से रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ।
0: अब्बास साहब क्या सुनाएंगे?
4: मैंने पहली दफा कॉल की है और आज कुदरत की नींद नहीं आ रही थी तो मैं शो आपका दे सुन रहा हूँ।
0: चले, आज नींद ना आना आपका हमसे बात करने का सबब बना।
4: जी मैं आपको सुनाऊंगा, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना,
0: चुप ही रहना,
4: किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, दलील ये है जवाब ये है, हमारी सारी खबासतों को हमारी सारी हिमाकतों को वो देखता है वो जानता है मगर वो चुप है,
0: वो चुप है।
4: अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना,
0: चुप ही रहना।
4: इसमें बात हो रही है अल्लाह की, कि अल्लाह हमारे सारे ऐप जानता है, लेकिन ये
0: मैं समझ गया बिल्कुल,
4: वो चुप है
0: बिल्कुल।
4: लेकिन हम किसी बशर का जो राज होता है ना, किसी को पता चलता है तो हम सबको बताते हैं यार उसमें ये खामियां
0: है, ऐसे ही है, इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह करे तो नींद आ जावे, ठीक है? बिल्कुल, वालेकुम सलाम, मीठी नींद आएगी, अंदाजा करें जी। ये भी देखें मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि मतलब मेरे भाई को नींद नहीं आ रही, उन्होंने फोन किया, पहली दफा बात होगी, तो देखें कहाँ से कहाँ चीजें जो है वो कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
5: बात कर रही हूँ, माशाल्लाह सब सुनने वालों को सलाम अलैकुम को, माशाल्लाह बहुत अच्छी पोएट्री उन्होंने पढ़ी, और मुझे पोएट्री ये कहनी है कि सर एक मैंने अपनी तरफ से कहनी है और एक थोड़ी सी फनी हो जाएगी।
0: अच्छा, एक आप
5: दो पोएट्री है मेरे लिए, मेरे पास।
0: पहले आप अच्छी वाली सुना दें फिर फनी वाली सुना देना।
5: चलो, किसी को काटो से चोट पहुंची तो किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को काटो से चोट पहुंची तो किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गई उन्हें वो फूलों ने मार डाला।
0: क्या बात है।
5: और सर फनी वाली जो है वो शायद सभा को फिजिकली और या फिर फनी भी, और वो ये है कि हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं,
0: ठीक है,
5: हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं।
0: सिग्नल जो है वो ड्रॉप हुए होंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नजीर साहब ने कॉल करनी थी, हमीद गुल साहब, ये दोनों हमारे सीनियर कॉलर हैं, बड़ा अच्छा इंतखाब सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन मुझे तो इस्लामाबाद का याद है, लाहौर का तो नहीं याद, नेक्स्ट कॉल कीजिएगा मैं लिख लूंगा, ठीक है?
5: तो शायरी सुनाते हैं।
0: शायरी आप सुनाएं ना, मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ। अल्लाह ले कितने चले गए, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी बोले, सुनाए। आपकी ना आवाज इतनी कम आ रही है, माजत के साथ, बस प्लीज दोबारा कॉल कर लीजिएगा, बहुत स्लो आ रही थी आवाज, मुझ तक आपकी आवाज ठीक नहीं पहुंच रही थी, हालांकि मैं डायरेक्ट टेलीफोन के पास हूँ, तो लिसनर्स हमारे ऑब्वियसली इरिटेट हो रहे होंगे कि यार क्या नहीं सब की कर रहे हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, प्लीज दोबारा कॉल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: वालेकुम सलाम मिस्टर भाई, खैरियत है?
0: मैं बिल्कुल ठीक, अपना प्यारा सा नाम बता दें।
6: मेरा नाम जी महबूब अली लाहौर से।
0: महबूब अली लाहौर से, सर क्या सुनाएंगे?
6: मेरे पास दो अशआर हैं।
0: सुनाए सर।
6: उठ जाए न भरम होठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को बताऊं कैसे
0: कैसे,
6: तेरा चेहरा मेरी आंख का फरमाया है, तेरे चेहरे से निगाहों को हटाऊं कैसे
0: कैसे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे अशआर आपने सुनाए हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? सर बहुत शुक्रिया आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल को आपने शॉर्ट करके दो शेर हमें सुनाए, हमें बहुत अच्छा लगा। वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं आखिरी एक दो कॉल ट्राई कर लेता हूँ, शायद अमीर साहब या हमें नजीर साहब की कॉल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
7: मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ।
0: लाहौर से साजिदा बात कर रही है?
7: हाँ जी।
0: क्या सुनाएं?
7: मैंने शेर सुनाना आपको।
0: जी जी सुनाए सुनाए।
7: ठीक है, और मैं आपको शेर सुनाती हूँ, शेर ना मेरा खुद का लिखा हुआ है, जैसे नीला जी कह रही थी आपने हाँ हूँ करना है, कुछ ना कुछ बात करनी है।
0: हाँ कर दे।
7: अगर आपको पसंद ना ना आया तो फिर भी आओ।
0: नहीं नहीं मुझे पसंद सारा पसंद आता है, आपको टेंशन ना ले।
7: चले ठीक है
0: सुनाए।
7: मेरी मेरी आंखों के दरिया में जितना भी पानी है ये सब उसकी यादें हैं। मेरी आंखों के दरिया में जितना भी पानी है ये सब उसकी यादें हैं। दस्ती मारी आंखें ना खोलो कहीं यादों का दरिया बिखर ना जाए।
0: क्या बात क्या बात।
7: ये मैंने खुद बनाया है।
0: चले आपने खुद बनाया, बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह बनाती रहा करें। ठीक है
7: चले ठीक है। आप जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है सबका अस्सलाम वालेकुम, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
8: वालेकुम सलाम।
0: नाम बता दें प्यारे भाई।
8: सर अदनान बात कर रहा हूँ अटक से।
0: अदनान भाई अटक से क्या सुनाएंगे भाई?
8: बस क्या सुनाए, वैसे मैं मतलब कि नीला मैडम के शेर सुन रहा था, वो बहुत अच्छी शेर शायरी करती है। आज फैन में भी करती थी तो माशाल्लाह रोने की लगी। तो मैं वैसे अभी फैन ऑन किया तो
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है
8: तो जी सर,
0: जजाकल्ला जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़ जी। प्यारे भाई आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप अपने होने का एहसास आपने दिलाया कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट कॉल देख लेते हैं, लगता है जो नसीब ही नहीं होना उनके नाल गल करना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आइए आप ट्राई करते हैं 0519202540। अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम। सॉरी सर अगेन कॉल करनी पड़ी, बार बड़ी तूफानी बारिश लग गई है और साथ तूफान आंधी भी है, तो प्लीज आज आप इधर ही रह जाए, घर नहीं जाना।
0: चले नवाज साहब बहुत शुक्रिया,
9: तो
0: मैं देख लेता हूँ, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। ठीक है,
9: अल्लाह हाफिज़
0: जी, अल्लाह हाफिज़।

FM 101 के माइक्रोफोन के जरिए दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, और बारिश के हवाले से भी दोस्त ने अपडेट दी मुझे, टेलीफोन से भी मैसेज के जरिए पता चला कि काफ़ी ज़्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश है, और आज असी आए भी अपनी मोटरसाइकिल पे आते हैं, जावांगे कहते बस यार तमाम दोस्तों का प्यार मोहब्बत होता है दोस्तों जो यहाँ पर खींच लाता है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी, और शुरू में इसलिए चीज़ें नहीं बताता कि आप लोग कहेंगे यार इस बंदे नाल दुनिया का हर मसला ना इसे नाल ही होता है, बाकी सब कुछ ठीक ने, इन्हों पता नहीं कि मसला रहता है। आज शाम से ऑनवर्ड ना 4 बजे से ऑनवर्ड मैंने एक दफ़ा लास्ट प्रोग्राम शुरू में इसलिए चीज़ें नहीं बताता कि आप लोग कहेंगे यार इस बंदे नाल दुनिया का हर मसला ना इसे नाल ही होता है, बाकी सब कुछ ठीक ने, इन्हों पता नहीं कि मसला रहता है आज।

अनबियरेबल होती है, बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता, लेकिन ये नाक सॉरी कान और दांत का दर्द जो है ये ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपको, आपकी जो सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मैं 4 बजे से ऑनवर्ड यही सोच रहा था यार क्या करूँ, जाऊँ ये शो जो है, मैंने आप लोगों से ख़ुद कहा है कि मैं बहुत ना मेंटली सुकून मिलता है मुझे इस प्रोग्राम के बाद, ख़ासकर जब आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आता है। तो मैंने कहा यार जाना तो लाजमी है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा वो पेन वाला मामला रहा, लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो ये चीज़ें हालांकि बतानी नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों से फिर प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, तो फिर इसलिए मैं कभी कभी ये चीज़ें बता देता हूँ। कभी सर दर्द होता है, कभी कंधा दर्द होता है, तो उसी भी कहते हो दुनिया के सारे मसाइल इसे बंदे नाल लें। मैंने उस दिन एक चीज़ रियलाइज़ की, मैं सोच रहा था कि आपसे ऑनर भी इस हवाले से डिस्कस करूँगा, वक्त ख़त्म हो चुका है जी, कॉल्स अब मज़ीद हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। नज़ीर साहब, हमीद गुल साहब, मैंने काफ़ी इंतज़ार किया आपके कॉल का, शायद वो इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं आज, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही आपकी कॉल, चूँकि आप लोग हमेशा अच्छा कलाम सुनाते हैं। मुझे इस सेगमेंट से ना ये आखिरी 15-20 मिनट मुझे ख़ुद सीखने का बहुत कुछ मिलता है, जैसे अनिल ने कहा कि आप लोग आप जो है वो थोड़ा बहुत बीच में हाँ हूँ किया करें, मैं ऑब्वियसली चीज़ें ये सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब मैं सीख जाऊँगा सारी कुछ। तो कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, 4 चांद लगाते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, जिनकी कॉल नहीं मिल पाती वो भी हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम है, बहुत मोहब्बत करने वाले। चीज़ ये आपसे शेयर करनी थी कि जो लोग ज़्यादातर बाइक ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली उन्होंने ना अपने साथ ये जो बरसाती वाला एक मामला होता है वो बाकायदा तौर पर रखा होता है, आपको ऑलमोस्ट 2500-3000 की वो मिलती है, वो आपको फुल पैक रखती है, हालांकि मेरे पास नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे जो चीज़ खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा हमें क्यों मशवरा दे रहा, आप वो रख लिया करें इस दौरान, और एक्स्ट्रा 2-3 बड़े जो शॉपिंग बैग होते हैं, शॉपर आम अल्फाज में उनको कह दें, वो लाजमी रखा करें, क्योंकि इस मौसम में ना बाज़ औक़ात लोग नहीं ये चीज़ें कैरी कर पाते, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, ख़ासकर किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो, चूँकि ये बारिश इतनी तेज़ होती है कि मतलब 5 मिनट में मतलब आप बिल्कुल शुफ गीले हो जाते हैं, तो आप इस अगर ये चीज़ आपके पास होगी तो आप किसी की हेल्प कर सकेंगे। मुझे याद है लास्ट टाइम लास्ट वीक से पहले ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे ये रावल डैम का पुल जो है जहाँ स्पिल वेज है, इससे ऑनवर्ड जो है मैं उस दिन मेरा अचानक बारिश शुरू हुई ना, मैं मेरे पास लैपटॉप ही था, कोई शॉपिंग बैग नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो अल्लाह जानता है मैंने कैसे 45 मिनट वहाँ पर गुजारे, फिर वो अल्लाह की करनी कि बारिश थोड़ी बहुत हल्की हुई। तो सबसे ज़्यादा जो जॉब वाले लोग होते हैं उनको टेंशन, चूँकि लैपटॉप अपना तो अल्लाह करे जी सबके अपने ही हों, कंपनी की तरफ से मिले होते हैं, आपने वो भी कैरी करना होता है, उसका भी ख्याल रखना होता है, फिर मोबाइल फ़ोन और ये ज़रूरी अशिया वगैरह, तो एक्स्ट्रा इस तरह की 1-2 चीज़ें रखा करें, आपको अगर रास्ते में कुछ आते हुए नज़र आए तो उसको दे दिया करें, ताकि किसी की मदद हो सके आपके तवज्जो से।

आपके लिए ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव किरदार अदा किया है, उसका शुक्रिया अदा ज़रूर किया करें, और अपने जो ख़ास रिश्ते हैं उनका बहुत ख्याल रखा करें। छोटी सी ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता, हफ्ते गुजर जाते हैं, अब महीने का नहीं पता चलता, सालों का पता नहीं चलता। ये देखें, आज 8वें महीने की 23 तारीख हो चुकी है, और हम मुझे याद पर हम कल 2026 को वेलकम करने के लिए प्रोमोज बना रहे थे यहाँ पे, तो अब तक शुफ शुफ वाला काम चल रहा है, मतलब इतनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर रही है। जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात कि ज़िंदगी में कोशिशें कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने असाज़ा इकराम का हमेशा एहतराम करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करे। आमीन। दोस्तों, ज़िंदगी शर्त है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम हाउस दैट में थर्सडे को, और एक दुआ मेरे लिए प्लीज़ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़्यारत करवाए। आमीन। ज़िंदगी शर्त, इंशाल्लाह वेंसडे को होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

और जब हम इंसान पर कर्म करते हैं तो मुंह मोड़ लेता और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है।